खातिर आज अपन बैंक वित्तीय संस्था या वॉलेट में संपर्क करा जाए। मोबाइल बैंकिंग ऐप वॉलेट कनेक्ट IPS तथा इंटरनेशनल पेमेंट ऐप से नेपाल पे QR में आसानी से भुगतानी प्राप्त करा जाए। नेपाल पे QR नेपाल का अपने QR।

उपलब्ध होए खातिर आज अपन बैंक वित्तीय संस्था या वॉलेट में संपर्क करा जाए। मोबाइल बैंकिंग ऐप वॉलेट कनेक्ट आईपीएस तथा इंटरनेशनल पेमेंट ऐप से नेपाल पे क्यूआर में आसानी से भुगतानी प्राप्त करा जाए। नेपाल पे क्यूआर, नेपाल का अपने क्यूआर।

0: रुपए QR नेपाल का अपने QR।
1: ओहो आज डाई हो नहीं मजा लागत हो मजा से दवाई करे ना कहतो
2: ये तो ओकर लाग कांति आरोग्य अस्पताल जाई ना पश्चिम नेपाल के अनुभवी व उत्कृष्ट विशेषज्ञ चिरफार कैना डॉक्टर से विश्वासिलो स्वास्थ्य सेवा यह कांति आरोग्य अस्पताल नेपालगंज में मिलत।
1: ए बात तो ठीक कहलो साची की अस्पताल में क्या का सुविधा मिलत त
2: वहाँ ता 24 घंटा इमरजेंसी सेवा दैनिक ओपीडी सेवा दूरबीन और लेजर परविधि से शल्यक्रिया जरल घाव उपचार करना संगे NICU PICU ICU हाईटेक ऑपरेशन थिएटर हो सुरक्षित प्रसूति सेवा फे वहाँ पा जाए छोट बच्चा हो भरखर जन्मल बच्चन के सामान्य से लेके जटिल रोग संगे सकु प्रकार के रोग के उपचार फे वहाँ कई जाए
1: ए ओसी नो कला से वहाँ जाए मन फे ढुक्क हुईना चाहल रह
2: हो तो स्वास्थ्य हेरचाह कहले ठीक ठाउँ रोजना हो कांति आरोग्य अस्पताल सुर्खेत रोड नेपालगंज सक्कुमेरिक उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा अक्क ठाउँमा संपर्क नंबर 081-535-717 कांति आरोग्य अस्पताल अपने हुकरन के स्वास्थ्य हमारी स्नेहा।
1: कान के समस्या बा उपचार करायला कहाँ ले जिना हो
2: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केन्द्र मा जाई ना वहाँ ता अनुभवी चिकित्सक को वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राविधिक से हरेक दिन कान के परीक्षण हुई ओतरकेल कहाँ हो वहाँ तो लंबा समय से कान पकती रहना जीर्ण रोग काने ढूसी कान खजोइना कान कम सुनना कान दम्मा होइना विटामिन के उपचार और परामर्श वो लंबा समय से कान पकती रहले कान के जालिम पाल परल कान हड्डी खैना रोग के ऑपरेशन कई के उपचार हुई वाकर संगे कान कम सुनना विटामिन के लाग कान में लगाइना सस्ता व महंगा ढेर प्रकार के कान के मशीन विटामिन के रोजाई अनुसार के उपलब्ध थे करा जाए जस्ते BTE CIC RIC जैसी मशीन फे वहाँ मिलत।
1: ए ओसी ढो कल से बुढ़ो हो वहाँ ले जाके उपचार करेले से वजह से सुनो से कही ता
2: एकदम समय में उपचार करेले से उपचार संभव बा बागेश्वरी स्वास्थ्य सेहार केंद्र प्राली नेपालगंज छ फुलटेकरा आर्मी ब्यारेक के सामने राप्ती रोड बांके संचालक पूरन चौधरी संपर्क नंबर 98-84-2697 98-85-23-697 वो 98-014-83-697 बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में सहभागी हुई नियमित कान के जांच करी।
1: खुशी के खबर खुशी के खबर हमार शहर नेपालगंज में ढेर बरस से सेवा देती आयल नेपालगंज नेशनल अस्पताल में ढेर विशेषज्ञ डॉक्टरन से रोज दिन स्वास्थ्य सेवा देती आयल बा ई अस्पताल में रोज दिन ढेर विशेषज्ञ डॉक्टरन से ओपीडी सेवा देना के संगे ढेर सेवा देती रलेक जानकारी कराईटी
2: जस्तक सर्जरी के सक्कू उपचार प्रसूति व स्त्री रोग के सक्कू उपचार नसा व हड्डी रोग के सक्कू उपचार मस्तिष्क हो मानसिक रोग के सक्कू उपचार छाला रोग के उपचार नाक कान घाटी रोग के सक्कू उपचार सेवा देती आयल बा
1: ओस्तक सुगर ब्लड प्रेशर मुटु रोग पेट छाती कलेजो संबंधी सक्कू उपचार पैथोलॉजी लैब सेवा वीडियो एक्सरे डिजिटल एक्सरे और सक्कू सेवा सहित गुणस्तरीय अस्पतालक संगे हरेक महीनक अंतिम शुक्रवार काठमांडू मेडिसिटी अस्पताल के सुगर और थायराइड रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुमन ब्राल ऐना जानकारी फेन कराईटी
2: नोट ई अस्पतालम कार्यरत सक्कू डॉक्टरन से हरेक महीनक अंतिम शनिवार निःशुल्क ओपीडी सेवा देना संगे जांच में 20% विशेष छूट के व्यवस्था करल बा नेपालगंज नेशनल अस्पताल बीपी चौक नेपालगंज संपर्क नंबर 081-536-465 98-249-80-665 98-482-80-465।

0: बाबा के कान पिरात है, दवाई करावे खातिर कहाँ ले जाई।
1: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहर केंद्र जाऊ ना, यहाँ अनुभवी विशेषज्ञ और वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राधिक लोगन से हर एक दिन कान परीक्षण किया जाता है। इतन कहाँ, यहाँ तो लंबे समय से कान पकते आवा, जीर्ण रोग, कान में यहाँ ढूसी भवा, कान खजुआब, कान से कम सुनाई देव, कान बंद हो, बीमारी लोगों के दवाई दरमत और सुझाव सलाह देते हैं। और साथ ही लंबे समय से कान पकते आवा, कान के जाली में छेद भवा, कान के हड्डी गले वाला रोग के शल्य क्रिया द्वारा दवाई करत हैं। साथ ही कान कम सुने वाले बीमारी लोगों के यहाँ कान में लगावे वाला सस्ता से लेके महंगा महंगा तक मेरे मेरे के मॉडल के कान की मशीन हेयरिंग एड बिरामी लोगों के इच्छा अनुसार उपलब्ध करावत है। बीटी, सीआईसी, आरआईसी जैसन मशीन भी यहाँ उपलब्ध है।
0: ए अस है तो बाबा के यहाँ ले जाए के दवाई करावे से बढ़िया से सुने लगी है तो।
1: हाँ तो समय में यहाँ दवाई करावे से दवाई दरमत संभव है। बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहर केंद्र प्राली नेपालगंज छ फुलटेकरा आर्मी ब्यारेक के सामने राप्ती रोड बांके। संचालक पूरन चौधरी। संपर्क नंबर 9840206697, 9850823697 और 9804483697।
0: बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में यहां सहभागी हुआ जाए, नियमित रूप से कान के जांच करावा जाए। खुशी के खबर, हम लोगन के अपने शहर नेपालगंज में यहाँ सालों से सेवा देते आवा रहा नेपालगंज नेशनल अस्पताल में यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टर लोगन से दैनिक रूप में यहाँ तमामन स्वास्थ्य सेवा प्रदान होते आवा है।
1: ये अस्पताल में यहाँ दैनिक रूप से तमाम मेर के विशेषज्ञ लोगन से ओपीडी सेवा होए के साथ हैं, तमाम मेर के सेवा होत रहा जानकारी करावा चाह जाता है। जैसे सर्जरी संबंधी संपूर्ण इलाज,
0: प्रसूति और महिला लोगन संबंधी संपूर्ण इलाज,
1: नस और हड्डी रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
0: मस्तिष्क और मानसिक रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
1: चर्म रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
0: नाक कान और गटई संबंधी संपूर्ण इलाज,
1: शुगर, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, पेट, छाती, कलेजा संबंधी संपूर्ण इलाज,
0: पैथोलॉजी लैब संबंधी संपूर्ण चेक जांच किया जाते है।
1: वीडियो एक्सरे, डिजिटल एक्सरे और संपूर्ण सेवा सहित गुणस्तरीय अस्पताल के साथ हैं। हर एक महीना के अंतिम शुक्रवार काठमांडू मेडिसिटी अस्पताल से शुगर और थायराइड रोग के इलाज के खातिर डॉक्टर सुमन बराल आवेग जानकारी भी करावा जाता है।
0: नोट, ई अस्पताल में यहाँ कार्यरत संपूर्ण डॉक्टर लोगन से प्रत्येक महीना के अंतिम शनिवार निःशुल्क ओपीडी सेवा ले साथ जाँच में यहाँ 20% छूट के व्यवस्था किया गया है।
1: संपर्क नंबर 081536465, 9842988665 और 9842888465।

0: रेडियो कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ज कृष्णसार जस तेज
1: कार्यक्रम घर अंगना के अंतर्गत शनिचर के दिन
2: स्वास्थ्य शिक्षा आयुर्वेदिक नुस्खा सहित घर अंगना में हम लोग आवाज आई
1: रेडियो क्रिस सार एफएम 94 मेगाहर्ज से देखा भी जाए और सुना भी जाए।
3: दिन भर चाहे जहां रही हो हमार पिया
2: शनिचर के दिन और साथिन हमार सखी चंदा
1: और हमार सखी संध्या कार्यक्रम घर अंगना।

0: हाँ सखी,
1: हाँ सखी,
0: सावन के बहुत, हाँ नमस्कार, सावन के बहुत बहुत शुभकामना है आपका सखी।
1: हाँ
0: और का, हाँ का,
1: हाँ तो सखी, हाँ आपका प्राविधिक माँ बैठा गया है और साथ ही हमार सखी चंदा और कार्यक्रम घर अंगना और साथ ही आज आप लोग जाना जाते हैं कि स्टूडियो में हम लोग एक मेहमान के साथ हैं जो आप लोग जाना जाते हैं कि हर एक हफ्ता में कोई ना कोई चीज़ इमान नवर हाथ है। तो आज हम लोग अपने स्टूडियो में आप लोगों के परिचित और जाने माने नेपालगंज के आप लोग पहचाना जाते हैं, आज हम लोग के गेस्ट के रूप में है, पहुना के रूप में है। तो सबसे पहले हम संध्या के नमस्कार और हमरे सखी का और हमरे जो स्टूडियो में है आज पहुना सबका मिलाए के और सारे श्रोता लोगन का आप लोगन का सावन के मंगल में हार्दिक शुभकामना है नहीं?
0: हाँ हार्दिक मंगल में शुभकामना। तो सखी,
1: हाँ
0: अब जो है कार्यक्रम के क्रम का जोड़ा जाए कि
1: और स्वागत भी करा,
0: स्वागत भी करा जाए। हाँ
1: कुछ हम लोग कुछ कारण बस ज्यादा दिन पर पौना भी बुलावा गया है और सावन के शुरुआत भी है, एक हफ्ता चला गवा है गते के हिसाब से, तो पौना बुलावा गया है तो हम लोग स्वागत करा जाते हैं। चाचा नमस्कार।
2: नमस्कार
0: नमस्कार चाचा जी।
2: नमस्कार नमस्कार।
1: आप अपन
0: परिचय दिया जाए साथी लोगन के यहाँ।
2: और परिचय तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग दिन दिया गवा है वैसे संपूर्ण जो दर्शक बंधु हैं
1: हाँ।
2: सब लोगन का राम राम नमस्कार। और नाम से तो हमका लोग विष्णु लाल कुमाल कह के जानत हैं
1: जी।
2: हाँ और हम एक प्रकार से अवधि अभियंता के रूप में हैं
1: हाँ।
2: और अवधि हिंदी और नेपाली ये तीनों भाषा के साहित्यकार भी हैं
1: जी।
2: और देखा जाए तो अगर आवाज़ के दुनिया में यहाँ जो पुराने साथी लोग हुई हैं वो जरूर जानत हुई हैं, जब विष्णु लाल कुमाल कहा गवा तो जानत हुई हैं कि नाम परिचित है।
1: हाँ, परिचित हाँ। से है। वही तो
0: आवाज से फिर बाद में हर लोग जानत भी हैं विष्णु लाल जी का, विष्णु लाल कुमार अंकल जी का सब लोग हाँ। जानते हैं।
1: हम लोग सीधा नाम नहीं ले पावा जाते, हम लोग तो आपके शिष्य हो, आप मान लो के मार्गदर्शक आप लोग हो, ये हम लोगों के पुरखा के रूप में आप लोग धरोहर हो
0: हाँ हाँ। और आपके ही आशीर्वाद से हम लोग आगे भी बढ़ा गया है,
2: सब भगवान कृपा है, मेहनत और परिश्रम। कहावत है कि जो मेहनत करत है ना भगवान उके सहयोग करते हैं, तो जैसे आप लोग मेहनत करते आगे बढ़ा गया है तो वैसे जो है आपका उन्नति मिलत गवा है।
1: धन्यवाद है, आप लोगों के आशीर्वाद ऐसे हम लोगों के साथ बना रहा है। और ये कार्यक्रम घर रंगना आप पहले भी सुना का हुई
2: हाँ,
1: जैसे
2: हाँ,
1: हम दुई जना का तो आप बचपन से जाना जाते हैं ऐसे, और ये रेडियो में लागे बहुत साल भी हो गवा है और साथ ही आपके साथ काम भी हम लोग करते करते बड़े भये हैं। और अब अवधि भाषा के अभियान जैसे आप साहित्यकार के रूप में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में भी पहचान है आपके, हम लोग जाना भी जाते देखा भी गवा है और साथ ही आपके जो संबंधित जो संस्था है जिका आप उजागर करा गया है ते ऊंचाई में लावा गया है उस संस्था के बारे में थोड़ा संक्षिप्त में व्याख्या भी कई दिन जाए।
2: धन्यवाद। अब जब ये कार्यक्रम के बारे में जो कहागा तो ये जब कार्यक्रम जब से शुरू किए हो
1: जी
2: तभी से जानकारी है, उससे पहले भी और कार्यक्रम तमाम चलावा गया है। और चंदा जी के प्रति और आप लोगों के प्रति जितना हम आशा किए रहन उससे बहुत ज़्यादा जो है आप लोगन का ये अवधि क्षेत्र में काम करत पावा है और हमारा जो कहा जाए तो उन आत्मा गदगद हो जाते हैं। कभू कभू जैसे चंदा जी कहते हैं कि विष्णु अंकल हमारे गुरु हुए तो हमका बहुत अपने का गौरव फील होता है, बहुत बड़ा गौरव महसूस होता है कि वास्तव में यहाँ कम से कम रेडियो बागेश्वरी FM कि संसार FM
1: हाँ,
2: और भेरी FM मिलाए के
1: हाँ,
2: ये तीनों जगह में 20-25 खाली लड़कियन कहीं हम लोग इस क्षेत्र में लावा गा
1: जी हाँ, जी बात सही
2: और
1: हाँ,
2: काम केहन मेहनत केहन के बाद अपने अपने धंधम चले गए। अब हम लोगन के अवधि समाज में ब्याह शादी घर कुरिया
1: हाँ,
2: जोड़े में ज्यादा रहा था
1: हाँ,
2: तो सब अपने घर कुरिया के चक्कर में चले गए, लेकिन फिर भी जो खास कह के इस क्षेत्र में आगे बढ़ के काम करे वाले में खाली चंदई जी बची और चंदा जी आपका जोड़ लेन, तो अब समझो दुई जने एक प्रकार से हो। चंदा जी तो जड़ होगी अब बिरवा बन गई हैं
1: हाँ।
2: और आप भी अभी जो है ओके पलई के रूप में काम
1: कर हाँ।
0: जाते
1: हैं।
2: तो अवधि समाज के बारे में जैसे कहा गवा तो सच मानो तो हम तनिक से छुटकरी में इतिहास बताए
0: हाँ,
2: जब 2046-47 साल के जब संविधान लागू भवा आंदोलन के बाद में तब हमारे यहाँ बोले वाली जितनी भाषा है मातृभाषा सबका जो है राष्ट्रीय भाषा के दर्जा मिला
1: जी।
2: तो उस समय हम कोयलाबास में रहे।
0: अच्छा।
2: तो जब राष्ट्रीय भाषा के दर्जा मिला तो हमारे मन में विचार आवा कि अब हमका अपनी अवधि भाषा जो हमारे लोगों की मातृभाषा है और ये क्षेत्र के भाषा है तो इके उत्थान के लिए कुछ न कुछ करे का चाहिए। बस तभी से हम ये अभियान में लग गए। और उसके बाद में हमारे सुरखेत में आए।
0: अच्छा।
2: और सुरखेत में आवे के बाद में जब वहाँ क्षेत्रीय प्रसारण के शुरू हुआ तो रेडियो तो अवधि सांस्कृतिक विकास परिषद एक संस्था गठन हुआ तो उसके हम लोग सुरखेतों में शाखा खोल लिया गया। और वही समय जो है एक ठो कार्यक्रम चलावे के लिए केंद्र से अनुमति मिला तो उसके नामकरण करे भी जिम्मा हम ही का मिला। तो नामकरण करे के जब मिला तो उसके नाम हम दुआरे मुहारे रखे रहे। दुआरे मुहारे रखे। वो 15 मिनट के कार्यक्रम रहे मगर फिर भी 15 मिनट के कार्यक्रम में तो कुछ नहीं होते ऐसा 2 घंटा का आप लोग पाए हो है मगर फिर भी वो 15 मिनट में हम लोग 2 गाना बजवा दिया जाता है और छोट मोट कहानी कभी डाल दिया जाता है
0: 15 मिनट के कार्यक्रम।
2: हाँ 15 मिनट के कार्यक्रम। तो वो कार्यक्रम जो है हमारे ऑफिस रहा राष्ट्र बैंक के तो हुए पर हम लोगों का तैयार करी और रिकॉर्ड करावते हैं जाके वह क्षेत्रीय प्रसारण केंद्र रहा रेडियो नेपाल के वहाँ पर यह करावते हैं। तो 2 जने आए रहे एक त्रिपाठी रहे और एक मिश्रा जी 2 जने अशोक मिश्रा और विक्रममणि त्रिपाठी ये 2 जने नए नए एकदम आए रहे
0: प्रोग्राम में नए नए आए रहे।
2: हाँ प्रोग्राम में नए आए रहे हम तो प्रोग्राम से कोई मतलब नहीं रहा हम तो खाली वहाँ राष्ट्र बैंक के कर्मचारी तो ना रहे लेकिन वो लोग जाने बताइन कि जाओ उनसे संपर्क कियो तो आपका सहयोग करिए तो आवे तो हम सारा वो बना दी। तो सच मानो वो कार्यक्रम के माध्यम से हमका अवधि लेखन और गीत लिखे कविता लिखे प्रेरणा भी मिले लगा। अब वो कार्यक्रम के खातिर हम लिखी और इससे हमार जो है
0: और हौसला बढ़ते
2: हाँ अवधि अभियान और तेज हुई गवा। तो ये मेर जो है शुरू हुआ बाद में यह जब यहाँ 2061 साल में यहाँ ये बांकेश्वरी एफएम स्थापना हुआ तो ये कार्यक्रम में यहाँ हम लोग कार्यक्रम चलावे एक सोच बनावागा। तो सोच बनाओगा तो 3 जने मिल के ही कहीं निवेदन दिया गया। 3 जने में कोको रहे एक हम रहें एक कृपा राम वाडिया रहे और एक काजल शर्मा रही। तो ये 3 जने मिल के लिख के निवेदन दिया गया कि हमका लोगों ने एक कार्यक्रम चलाओ एक दियो और हम लोग हाँ अवधि भाषा में चलेबे और आप कार्यक्रम चलाओ दियो और इके वापस हमें लोगन आपके और कुछ न चाहिए ये मेरे कह के लिया गवा।
0: तो कार्यक्रम के नाम का रहा है
2: तो वो कार्यक्रम अब जब भवा तो कहीं हम लोग एक ही कार्यक्रम देबे।
0: अच्छा एक ही कार्यक्रम
2: एक कार्यक्रम मिली और वो 3 दिन के मिली।
0: अच्छा हफ्ता में 3 दिन
2: हफ्ता में 3 दिन बड़े पहले एक ही दिन देता है बाद में 3 दिन देख तैयार में। तो उसके कार्यक्रम के नाम जो है तो उन भी रखे हमें मिला मौका तो उसके नाम हम रखे ना अब कहीं कि एक ही कार्यक्रम में यहाँ सब चीज दिखावे पड़ा तो हम सोचें सब चीज कैसे करा जाए ये तो वही है कि हाथ बड़े मड़ई उमर लौकी हो तो रही सब वो वही पर।
0: अच्छा मतलब हफ्ता में 3 दिन कार्यक्रम रहा है मतलब एक के तरीके से रहा।
2: हाँ चलाओ तो ये मेरे अच्छा। तो हम उनके नामकरण रखें द्वारे जमघट।
0: अच्छा
2: जैसे द्वारा मुहारा रखे हो तो का है द्वारे मुहारे आओ तो सब बतवा लो
0: सारी मुहारे पे बैठ के सब कुछ
2: बतवा लो चाहे तरकारी भी चाट डालो है नहीं
0: चाहे बथुई भी चाट डालो
2: चाहे जो कुछ कर डालो तो वैसे उनके नामकरण रखा हुआ द्वारे जमघट।
0: द्वारे जमघट मतलब वहाँ जमा हुई के द्वारे
2: जमा हुई जमघट जमघट लगा तो सब चीज जमा हुई
0: सब चीज
1: बैठत
2: न रहे सबको रोना गाना बतुआना सारा चीज हो रहा विरोहा से लेके आल्हा तक सुनाई दे
0: तो ये कौन स्टेशन से प्रसारण रहा
2: है। हाँ ये रेडियो बांकेश्वरी एफएम से शुरू हुआ 2061 साल पूष 3 गते शनिवार के दिन रहा।
0: आज भी शनिवार
2: हाँ उस दिन हम उनका उद्घाटन किया
1: तो
2: ये कार्यक्रम कहीं है महीना पूछ 3 गते रहा।
0: अच्छा।
2: तो शुरू किया और ये 20 साल तक हम चलाओ एक बाद में अब हम अस्वस्थ हो गए वो अब बात करे तरीका सब चीज थोड़ा तो हम छोड़ दिया।
0: ठीक है अंकल जी, अब चाचा हाँ। जी अब कहा है कि थोड़ा सा आपका हाँ। भी विश्राम हो चाहिए ना,
2: जरूरी जरूरी
0: तो गाना सुना जाए पहले, बात
2: बात
0: कही तो करते रहना है ना सखी,
2: बात कही चला करिए और मनोरंजन भी श्रोता लोग चाहिए ना,
0: थोड़ा हम लोग इनका भी विश्राम हो जाइए, अभी बहुत बात करे है चाचा जी से,
2: दर्शकन के यहाँ मनोरंजन भी चाहिए तो बढ़िया गीत सुनाए दो चटपटा।
0: बिल्कुल बिल्कुल, अभी व्यापारी विश्राम की तरफ चला जाए पहले, चटपटा गीत सुनाए।
1: आप ना जाना चाहते हैं हमारे सखी का, जैसे इनका बात में फंसाए रहो अच्छा, तो ये बात करा करी है हाँ। अगर जैसे कहो कि सखी हाँ। कुछ गीत संगीत सुनाए दो हाँ। बस ही हमका व्यापारी विश्राम की तरफ हाँ, ले जाते हैं।
0: अब का करी, अब का करी चाचा जी, का है अब ये बातें ऐसे करने लगती तो हमारा सारा ध्यान इनके तरफ हो जाता है,
1: झगड़ा यही
2: बहुत जरूरी है ना,
0: अभी एकदम इंपॉर्टेंट वाला जरूरी वाला बात करने लगती तो सुनने मन लगाते, जब सुनने लगे तो जब कहिए कि गाना बजाए दो तो फिर हमारे ध्यान आ जाते कि व्यापारी विश्राम की तरफ चले, वो भी जरूरी है।
1: चलो ठीक है, चला जाए व्यापारी विश्राम की तरफ, फिर आवाज आई घर
3: हम बीए भएको पनि 8 वर्ष भइसक्यो, सबैले एउटै प्रश्न सोध्छन्, खुशीको खबर कहिले सुनाउने भनेर।
4: मलाई थाहा छ तिमी कति पीडामा छौ, तर हामीले अहिले आशा मार्नु हुँदैन।
3: कति अस्पताल धायौं, कति उपचार गरायौं, अब त सपना पनि अधुरै रहने हो कि जस्तो लाग्न थालेको छ।
4: होइन, हामीसँग अझै आशा छ। मैले शुभश्री आईबीएफ क्लिनिकको बारेमा धेरै सुनेको छु, जहाँ धेरै दम्पतिहरूको काख भरिएको छ।
5: सन्तान सुखको यात्रामा तपाईँको भरोसाको साथी शुभश्री आईबीएफ क्लिनिक, अनुभवी विशेषज्ञ चिकित्सक, आधुनिक प्रविधि र व्यक्तिगत हेरचाह सहित।
3: हाम्रो जीवनमा पनि आखिर त्यो दिन आयो।
4: धन्यवाद शुभश्री आईबीएफ, हाम्रो सपना साकार बनाइदिनु भएकोमा।
5: थप जानकारीका लागि शुभश्री आईबीएफ क्लिनिक, सोल्टी मोड, काठमाडौँ, फोन नम्बर 98 61 14 16 99।

0: सखी?
1: हाँ सखी,
0: मतलब सावन के गीत संगीत सुनावत हो। हाँ। सावन के महीना शुरू है,
1: शुरू है
0: ना। हाँ। वैसे भी हम लोग सब कोई हरियर हरियर हैं हन,
1: और खाली चाचा जी पियर हैं।
0: अब उस हरियर पेड़ के गुइया लागत है जानत नहीं हो। हां पेड़ पेड़ देखो आगे भी रखा है। हां बस यही मारे देखो हरियर के साथ पेड़ रहत है तो चाचा मतलब पीला पहनी ने सावन में पीला के भी महत्व रहत है। और हरियर पीला के जानत हो आज का है?
1: का है?
0: आज है एकादशी है।
1: एकादशी है? अरे हां वही तो हम कहनी पीला फूल कहे रख दिए हो। तो विष्णु भगवान का पीला फूल चढ़त है ना,
0: तो विष्णु चाचा आज आए वाले।
1: हाँ, वही मारे तो, विष्णु चाचा भी आए वाले रहे।
0: तो आज विशेष
1: जो कि हम लोगन के गुरु भी हुए।
0: हाँ, और स्वागत भी करा। आज विशेष सोच के आप लोग का हम लोग पहले से याद करा जाता रहा है कि आज के दिन आपका हम लोग का गेस्ट में जैसे भी बुलावे के, तो सखी हम लोग सलाह करा गया है कि, तो सखी हम लोग सलाह करा गया है कि, और आपके नाम भी

0: हमका ये मार्ग पर लावे वाले हमरे विष्णु अंकल अर्थात गुरु जी हैं जो उनके आशीर्वाद से आज हम यही मुकाम में आए हैं।
1: वैसे चमक रही।
2: हाँ बिल्कुल रही। अब हम छुटकरी में यहाँ ये बताई कि पहली बात जो इसे सावन के बात उठायो।
1: हाँ सावन
2: तो सावन जो है बड़ा पवित्र महीना के रूप में लिया जाता है। और सावन में यहाँ हरा और पेड़ के जो बात करो तो हरा रंग जौन है जब पीला रंग में नीला रंग मिल जाता है तो नीला रंग आकाश के रंग होगा।
0: आकाश के रंग होते
2: तो पीला रंग में जो नीला रंग के जब मिल जाते हैं तो हरा रंग बन जाता है। तो ये हरा रंग नीला और पीला के सम्मिश्रण हुए। और दूसरी बात का है सावन जो महीना है तो ये महीना का भगवान शिव के सबसे पवित्र महीना माना गया है। और सावन हम लोगों के यहाँ दो प्रकार से माना जाता है। एक तो ये तिथि के हिसाब से और तिथि के हिसाब से जो माना जाता है उसका शुद्ध सावन कहा जाता है। और ये जो गते के हिसाब से मनावा जाता है ये हिसाब किताब वाला सरकारी कामकाज वाला मनावा जाता
1: गते
2: है
1: हिसाब से जो
2: तो अभी आषाढ़ है और गुरु पूर्णिमा तक आषाढ़े रही 14 गते गुरु पूर्णिमा पर ही
1: तिथि।
2: तो गुरु पूर्णिमा जो है वो सबसे आषाढ़ के आखिरी दिन हुए। और गुरु पूर्णिमा का हम लोग भौरी भी कहा जाता है।
0: हाँ
2: भौरी भी कहा जाता है। और गुरु जो वेद व्यास हैं उन्हीं के नाम से गुरु पूर्णिमा मनावा जाता है। और गुरु के दिन में सब जितने भी लोग हैं सबका गुरु माना था, जो जिसे ज्ञान मिला वही गुरु मान लिया जाता है। तो ये हमारे अपने गुरु का आदर सत्कार दे के लिए उका माना जाता है। और हम लोगों के अवधि समाज में एक विशेषता ये है कि कोई भी तीज त्यौहार का हम लोगों का धार्मिक मान्यता से जोड़ दिया गया है, जिससे उके दो अर्थ हो जाए। एक तो उके प्रति श्रद्धा भक्ति भी हो जाए और दूसरा हम त्योहारों मनाई और बनाई अच्छा खाई और दूसरे खवाई तो ये इसे भी जुड़ जाते हैं। तो सावन महीना के बारे में कहा है कि जब सागर मंथन हुआ रहा छोटकरी में आप टाइम ले लेवे तो सागर मंथन हुआ रहा तो उमा से जो हलाहल भीख निकला रहा है तो भगवान शिव जो है उसका गले में रख लेना है। सब देवतन के विनती पर भगवान शिव गले में रख लेना है। और वो हलाहल भीख इतना गर्म दिस कि भगवान शिव उस समय एकदम बहुत व्याकुल रहे। तो उस समय गंगा जी जो है अवतरण हो के उनके शरीर का शीतलता दी। तो पूरे सावन महीना भर जो गंगा के जल भगवान शिव का अर्पित करत है उसका बड़ा पुण्य मिलत है और भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। यही पूरे सावन भर जितने शिवालय हैं विश्व में सब जगह लोग जो है जल अर्पण करते हैं। गंगा नदी के जल लाए के चलावे के एक परिपाटी है। और बोलबम कांवरिया जो है तो कांवरिया सबसे प्रिय यही माने जाते हैं कि कांवरिया भगवान शिव का जल अर्पित करते हैं। तो ये हमारे पूरा सावन के महीना भगवान शिव का सबसे अच्छा महीना माना गया है। और सावन के महीना भर भगवान शिव जो है अपने अंग देवन के साथ में, अंग देव माने उनके शरीर में जो देवता लोग हैं जैसे नागराज हैं, चंद्रमा है, तो ये सब सहित पूरे परिवार सहित भगवान शिव पृथ्वी पर निवास करते हैं पूरे सावन भर। और यही वजह से पूरे सावन भर उन्हीं के अंग देवन के त्योहार मनावा जाते हैं। जैसे नाग पंचमी मनावा जाते हैं तो नाग देवता के नाग देवता का जल अर्पित करो तो भगवान शिव का मिलत है। तो ये जो है पूरे भगवान शिव जो है पूरे परिवार के सहित निवास करते हैं। और गंगा जी भी उनके एक जो है प्रकार से एक पहली जो है पत्नी के रूप में गंगा जी का स्वीकार किया जाता है। हाँ तो गंगा जी भी जो है इस समय उनके महत्व बहुत ज़्यादा रहते हैं और गंगा जी का अर्पण करा जाते हैं। तो ये जो है सावन के विशेष महत्व है। यही कारण है कि हम सावन का हर प्रकार से मनावा जाता है, हंसी खुशी से मनावा जाता है। लेकिन इमा का हुआ कि जो सावन में का है परिवार महिला लोग के परिवार के साथ में अगर बिछोड़ हुई हुआ तो उनका दुख होते है। तो सावन में खुशी मनावे के टाइम में जब उनके पिया साथ में ना रहते हैं तो उनका थोड़ा दुख भी लागत है। यही मारे सावन में कजरी के गावे के प्रचलन है। यानी कजरी जो है एक प्रकार से मन के पीड़ा का व्यक्त करत है। और कजरी जो है सावन भर में

0: ज्यादा गाए जाते हैं, झूला झूले जाते हैं कजरी के।
1: तो जैसे चाचा जी सभी सावन के महीना में यहाँ जैसे जोन जोन बिटिया लोगन के जो नई नई शादी होत है, तो इस सावन महीना ही जैसे बुलावत भी है, कोई मतलब घुघरी भी भेजते हैं, जो परंपरा जो चलती आवा है।
2: नहीं जैसे शादी भवा तो कहते पहला सावन
1: मई के माह होते है।
2: हाँ
1: जब उनके दूसरे मतलब दूसरा साल होते तीसरा साल होते तो वहाँ घुघरी पहुँचावे के प्रचलन है।
0: नहीं तो उनके कारण है ना कि हम लोगन के जो अवधि परंपरा है ये बहुत वैज्ञानिक परंपरा है। वैज्ञानिक परंपरा का है कि आजकल कहते हैं चट मंगनी पट शादी, तो जब चट मंगनी पट होते वो पट से टूटी जाते हैं। और जो हम लोगन के अवधि समाज के जो रहा बिहाव हुआ शादी बिहाव हुआ तो वो धीरे धीरे लड़की जात है। वहाँ पहले गौने में गई, बिहार में गई, एक रात रही वहाँ बिहार के, तीन रात रहा थे। और बिहार के बाद गौने में गई, गौने के बाद थौने गई, थौने के बाद आला हुआ, आला फिर चाला हुआ, फिर पहली विदाई हुआ, फिर दूसरी विदाई, फिर तीसरी विदाई के आवाज़ ही शुरू होते। तो कभी दो दिन, कभी चार दिन, कभी दस दिन, कभी पंद्रह दिन, कभी महीना दिन, ऐसे धीरे धीरे वो वहाँ रहा थे।
2: और
0: वहाँ
2: के
0: वहाँ के परिवार में धीरे घुलमिल होते हैं और यहाँ के माया प्रेम छूटत जाते हैं। तो ये मेरे का होते है कि थाईत रहा थे, बंधन के थाई रहा है। वहाँ के
2: बिटिया का ज्यादा खलत भी नहीं है,
0: खलत भी नहीं है, खलत है न इधर नैहर वाले खलत है न उधर ससुराल वाले का। बहुत धीरे धीरे जो है जो वहाँ जाके सबके प्रेम जीत लेते व्यवहार में। और आजकल का हुई हुआ है कहते हैं चटपट वाला, तो चटपट हुआ साल भरे में बहुत कम विवाह ऐसे हैं जो साल भर तक चल पावत है।
2: यही होते ना चाचा की शादी में विदाई भवा तब से जानो बिटिया का अहिन नहीं देते। हाँ एक दिन टहल जाओ,
0: हर बार जय बार लावे जावा जाते, देखो जय बार लावे जावा जाते, कई बार उके कुछ हंस ले आवा जाते, सीधा पानी ले गवागा। पहला सावन परा तो उके सौनी दियो, पहला ढुलेरी परा होली परा तो माँ भी कुछ न कुछ दियो, पहला अगर मान लो
1: करवा पड़ा
0: करवा पड़ा तो कुछ न कुछ दियो, तो देही परी सदा देह परी करवा। तो अही के बाद अगर मान लो कोई बच्चा सच्चा के वैसा स्थिति बाबा तो सब चीज देख पड़त है। तो ये सब हाँ सारा चीज तो ये कहा धीरे धीरे लड़की के जो पावे के हक होते हैं नैहर के वह का धीरे धीरे मिलत चला जाता है और ये पारिवारिक जो है बंधन मजबूत हो जाते हैं, प्रेम व्यवहार बनते चला जाते हैं। तो
1: सखी सुने
2: ध्यान से सुने,
1: ध्यान से सुने हैं ना, पूछियो तो हम बता भी सकी थी।
2: तो यही तो कहा जाता है कि अपन जब कोई बुजुर्ग रहत हैं सलाह दे वाले जानकारी ले वाले तो ऐसे सलाह मिला था। तो आज हम लोग खुद सलाह भी लिया भी जाते हैं और संपूर्ण श्रोता आप लोगों का ये सलाह ग्रहण भी करते जावा जाए। और छोटे छोटे जो आजकल के बच्चे हैं आप लोग भी अपने भाषा अपने संरक्षण अपने जो समुदाय चीजें हैं अवधि भाषा में का संस्कृति है
1: अपने बच्चे हाँ अपने बच्चन का भी ये सीख दिया जाए जो हम लोग परंपरा चलते आवा है।
2: हमरे सखी कुछ सुनाए दे कि
1: अब यही बात भी तो सुनाए तो देबे सखी लेकिन टाइम देखो 2 बजे के टाइम चेक के
2: तरफ चला जाए के घड़ी लेबे नहीं करे है।
1: अच्छा मोबाइल की क्या जरूरत है, मोबाइल है ये ना,
2: हम लोग टाइम में नहीं देखा जाता।
1: अच्छा सखी सुनो अब चाचा जी आप भी सुनो, अब हम लोग देखो भौरी भी आए वाला है।
2: अच्छा
1: तो भौरी की तैयारी करा जाए, आप कहा कि भौरी आए वाला तो भाई कैसे बनते कहा है आपको तो पते नहीं है, बाकी चाचा जी बताए दे चलो खावा जाए। और
0: तो पहले भौरी सुनियो कि पहले हमारे श्रोता जो दर्शक श्रोता है उनका कुछ गीत भी
1: हम लोग अपन खावा पिया जाइए और इधर जो है इधर गीत संगीत सुनिए
2: बताओ,
1: इधर गीत संगीत सुनिए सखी आप समझत ना हो
2: ना, आज हम नहीं समझ पाए, आज तो भाई
1: कि हम लोग गाना सुना जाए पहले 2 बजे के टाइम चेक के बाद थोड़ा सा छोटा सा
0: भौरी के पिसान।
1: हाँ वही बात, आप देखो समझ पाए नहीं, अब समझ पाए नहीं चाचा जी, वही बात कहते चलो चटनी उटनी की व्यवस्था करा जाए।
2: नहीं हम जाए थे दही दूध ले, आप चटनी पीसो ठीक तैयारी करा जाए।
1: तो चलो फिर

0: toile panija. Extreme energy drink.
1: Beer Dental.
2: नेपालगञ्ज शहरमा सञ्चालित अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न बीर डेन्टलमा दाँत तथा मुख सम्बन्धी सम्पूर्ण उपचार काठमाडौँ तथा भेरी अञ्चल अस्पतालका अनुभवी वरिष्ठ डाक्टर आरकी लामिछानेद्वारा उपचार गरिन्छ।
3: डाक्टर लामिछानेद्वारा गरिने विशेष उपचारहरू: दाँत सफा गर्ने, दाँत भर्ने, दाँत निकाल्ने, दुखेको दाँतको जराको उपचार, खाली ठाउँमा दुरुस्त प्राकृतिक जस्तै नक्कली दाँत राख्ने, बाङ्गो टिङ्गो तथा नमिलेको दाँत फिक्स अर्थोडन्टिक प्रविधिद्वारा मिलाउने, गिजाको रोग जस्तै गिजा सुन्निने, रगत पिप बग्ने, मुख गनाउने र दाँत हल्लिने समस्याको उपचार, पहेँलो खैरो दाँत, सानो र ठुलो दाँत, छिद्रा तथा ग्याप भएको दाँतलाई कस्मेटिक उपचार प्रविधिद्वारा राम्रो बनाउने, दाँत मुखको चोटपटक तथा बङ्गारका हड्डी भाँचिएको पनि उपचार हुने।
2: सम्पर्क बीर डेन्टल क्लिनिक भेरी अञ्चल अस्पतालबाट 150 मिटर त्रिभुवन चोक तर्फ।
3: फोन नम्बर 081-5-32-375। नेपालकै एकमात्र अत्याधुनिक डेन्टल क्लिनिक अब नेपालगञ्जमा। सन् 2016 डाक्टर लियोनार्ड लिङ्को फाउन्डेसनद्वारा बेस्ट डाक्टर अवार्डद्वारा सम्मानित डाक्टर प्रतीक श्रेष्ठ, एनएमसी 19393, बीडीएस दिल्ली, एफएजीसी मणिपाल, सर्टिफाइड इम्प्लान्ट एन्ड लेजर डेन्टिस्ट्री अमेरिका, सर्टिफाइड बोटक्स एन्ड फिलर स्पेसलिस्ट युरोप, एडभान्स सर्टिफिकेट इन जेनरल डेन्टिस्ट्री क्यानाडा, मिनी रेजिडेन्सी इन इन्डो डेन्टिक्स साउथ कोरिया, यी विभिन्न देशहरूमा अध्ययन गरेका डाक्टर प्रतीक श्रेष्ठद्वारा उपचार गरिने अत्याधुनिक डेन्टल क्लिनिक अब नेपालगञ्जमा।
2: विशेषताहरू: दुखेको दाँतहरू जराबाट नै भरेर नदुख्ने बनाउने, बच्चाहरूको दुखेको दाँत जराबाट भर्ने, किरा लागेको दाँतलाई भर्ने, दाँत निकाल्ने, दाँतमा खोल लगाउने र दाँत नभएको ठाउँमा दाँत हाल्ने, मेटल क्राउन, बाङ्गो दाँतलाई तार बाँधेर सिधा गर्ने, वृद्ध अवस्थामा भएको बुढाबुढीको पुरा दाँतको सेट लगाउने, दाँतलाई प्रत्यारोपण गर्ने, चाउरी परेको अनुहारलाई राम्रो पार्ने, आँखा तल खाल्टो भएकोलाई भर्ने, सबै उपचारहरू दूरबीनबाट गरिने, डिजिटल एक्सरे सेवा।
4: सम्पर्क गणपति क्लिनिक, सुर्खेत रोड नेपालगञ्ज नर्सिङ होम नजिकै कुसुम पेट्रोल पम्पको सामुन्ने, पासङलाम रोड जाने बाटोमा। फोन नम्बर 081-5-31-366 र 98-085-49-451।
5: हाय रे दिदिया, हमार टिहुनी बहुत पीड़ा थे, बहुत दवाई कराए डालें, ना ही ठीक आते।
6: सुनो बहनी, खुशी के खबर,
7: अब ऑपरेशन के खातिर काठमांडू और लखनऊ दौरे धूपे न पड़ी। पश्चिम नेपाल में यह एकमात्र आधुनिक अल्ट्रासाउंड के सुविधा है।
6: कृपा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड में यहाँ मूत्र और दिल गुर्दा रोग के सब ऑपरेशन दूरबीन प्रविधि के द्वारा किया जाता है। और वहाँ पेट संबंधी सब मेर के दवाई, पित्त थैली के पथरी, अपेंडिस, हार्निया, हाइड्रोसील, बबासीर, फीसर भगंदर जस पुरुष लोगन में यहाँ लिंग, ब्रिये और अंडकोश और मर्दांगनी की कमी हो एक समस्या साथेन कैंसर संबंधी सब दवाई ऑपरेशन किया जात है। और जाना थियो हाथ गोड़ करिहाव, रीढ़, टिहुनी पिराप, झंझनाहट हो, नस पिराप, झमझमाप, हड्डी टूट फूट भवा है तो दवाई और ऑपरेशन के साथेन प्लास्टर बांधा जात है। महिला लोगन में यहाँ सफेद पानी बहाव, महीनावारी में यहाँ गड़बड़ी, निसंतानता, गर्भवती लोगन के नियमित चेक जांच, बच्चेदानी और स्त्री रोगन के सब मेर के दवाई के साथेन ऑपरेशन किया जात है। 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
8: डॉक्टर प्रवीण कुमार गुप्ता, कंसल्टेंट सर्जन, यूरो सर्जन, जनरल कैंसर, मूत्र रोग तथा मृगौला रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर राहुल मिश्रा, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन, हार्ट जोड़नी तथा नशा रोग विशेषज्ञ।
6: कृपा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, सुर्खेत रोड, आदर्श नगर, नेपालगंज 10, बांके, वन कार्यालय के नेरेन, पेट्रोल पंप के पछुए। संपर्क नंबर 081-5-31-000।

0: lip on ya.
1: Extreme energy drink.
2: सोचे भन्दा सस्तोमा हाई क्वालिटीका सोफा र फर्निचर चाहियो, आउनुहोस् सोफा हब नेपालगञ्ज।
3: हरेक सामानको खरिदमा 1000 देखि 20000 सम्म छुट, 10 देखि 15 वर्ष सम्मको वारेन्टी, साथै फ्री डेलिभरीको सुविधा पनि। अहिले थमाथम बिक्री भइरहेको छ।
2: स्थान राजा चोक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको अगाडि।
3: सम्पर्क 97051148470।
2: सोफा हब नेपालगञ्ज,
3: विश्वासमा नम्बर 1,
2: क्वालिटीमा सबैभन्दा बेस्ट।
4: आमै नि, सामान खरिद गर्ने यति लामो लिस्ट सर, र हेर्दा नेपालगञ्ज देखि लखनऊ सम्म धाउनु पर्ला कि क्या हो?
5: हैन बहिनी, यसमा आत्तिनु पर्ने केही छैन। अब यी सबै ब्रान्डेड कम्पनीको सक्कली र उचित मूल्यको सामान एउटै विशाल बजार मारुति मेगा मार्टमा पाइन्छ। यो रुपैडिया बजारको सब्जी मण्डीको छेउमा रहेको मारुति मेगा मार्ट हो। बहिनी, त्यहाँ शादी विवाहको सबै सामान, सौन्दर्य प्रसाधन, सुटिङ, सर्टिङ, साडी, अन्डर गार्मेन्ट्स, होम एप्लायन्सेस, ड्राई फ्रुट्स, विद्युतीय उपकरणहरू, आर्टिफिसियल ज्वेलरी, किचन तथा टोयलेटहरूको सामान आदि सबै सामग्रीहरू एकै छाना मुनि पाइन्छ।
6: स्थान मारुति मेगा मार्ट सब्जी मण्डी अगाडि गल्लीमा नानपारा रोड रुपैडिहा बजार। मोबाइल नम्बर 98699064581।
7: भैया, बहुत दिन से महिनवारी में यहाँ गड़बड़ी, सफेद पानी बहाव और पेट पीराव समस्या से बहुत दुख पाए चुके हैं। कहाँ जाए तो बढ़िया रही।
8: हम भी पहले गैस्ट्रिक, बवासीर और पेट के समस्या से बहुत परेशान रहें। बाद में यहाँ नेपालगंज के मेडिकेयर क्लिनिक गए, वहाँ मर्दे और मेहरुए दोनों लोगों के समस्या के उपचार और ऑपरेशन एक ही जगह होता है। अनुभवी विशेषज्ञ डॉक्टर से सेवा मिले के बाद अब बहुत आराम हुआ है।
7: सही, वहाँ का सेवा मिलत है तो भैया?
8: सुनो, वहाँ औरतन के बांझपन, सफेद पानी, महीनावारी में गड़बड़ी, गर्भवती जांच, बच्चादानी और स्तन संबंधी समस्या के उपचार होते है। और पुरुष या अन्य बीमारी लोगों के खातिर गैस्ट्रिक, बवासीर, हर्निया, अपेंडिक्स, थायराइड, पित्त थैली और शरीर में यहाँ गिल्टी और तमाम मेर के लैप्रोस्कोपिक और लेजर सर्जरी सेवा भी उपलब्ध है।
7: हाँ, मेडिकेयर क्लिनिक में यहाँ वरिष्ठ लैप्रोस्कोपिक दूरबीन और लेजर सर्जन डॉक्टर कमर हसन अंसारी और वरिष्ठ लैप्रोस्कोपिक स्त्री और कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमीरुन निशा से सेवा देते हैं। आप भी आज कोई भी चेक जांच और ऑपरेशन के खातिर नाम दर्ता करके तहे दिल हुआ जाए।
8: मेडिकेयर क्लिनिक नेपालगंज उप महानगर पालिका वाड़ा नंबर 11 बीपी चौक के नेरेन उप महानगर पालिका के कार्यालय के लाइन में यहाँ। संपर्क नंबर 97649117686, 98224392377।
9: सबके संयुक्त आवाज मेडिकेयर क्लिनिक, मर्दे और मेहरुए दोनों लोगों के स्वास्थ्य उपचार के विश्वसनीय गंतव्य।

0: रेडियो कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ज कृष्णसार जस तेज
1: कार्यक्रम घर अंगना के अंतर्गत शनिचर के दिन
2: स्वास्थ्य शिक्षा आयुर्वेदिक नुस्खा सहित घर अंगना में हम लोग आवाज आई
1: रेडियो कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ज से देखा भी जाए और सुना भी जाए।
3: दिन भर चाहे जहां रही हो हमार पिया
2: शनिचर के दिन और साथ ही हमार सखी चंदा
1: और हमार सखी संध्या कार्यक्रम घर अंगना
4: घर अंगना।

0: हाँ सखी।
1: हाँ सखी।
0: भौरी तो बड़ा बढ़िया बना रहा है ना, कितना अच्छा लगा।
1: अभी हम लुकवाए रखे रहे,
0: खाई
1: लियो बता।
0: अरे तो जनते हो, अब थोड़ा चखबे नहीं
1: तो। ऊपर से पूछो तो भौरी बहुत बढ़िया रहा है। पहले कौना हम लोग बैठाए, पहले हाल चाल पूछी खाइन की नहीं खाइन चाचा।
0: अरे हाँ
1: देखो चाचा जी, आप खाओ, खाई लिए नहीं,
0: आप खाओ
2: ना ही। ऐसा है भौरी तो खावागा तमाम, लेकिन जो उन भौरी भौरी त्योहार के दिन खावा जाते
0: है, उनके बातें कुछ और रहते
2: रहा।
0: वो तो है,
1: लेकिन ज्यादा दिन नहीं है, आने वाला है,
2: अलग ही रहा।
0: लेकिन ये क्या आनंद नहीं आवा, ये खावागा तो
2: बनायो। अब उनके तैयारी कैके बनावा जाते है। और कहावत है ना कि जैसे कोई भोजन प्रसाद बनाओ और उनका पहले भगवान के भोग लगा दो, तब फिर उका खाओ तो भोजन न होके वो प्रसाद हो जाता।
0: प्रसाद हो जाता
2: तो बहुत मजा आवत है ना। तो इसे जो जो भौरी बनावा जाता है, तो गेहूं के पिसान के यहाँ बढ़िया से भाई भिजो दिया गया है नहीं, और इसके बाद में भौरी बनावा जाता है। तो भौरी के यहाँ जो है गोबर के कंडा में यहाँ का जब से कहा जाता है, अहरी बनाई के अहरी बनावा जाता है, और इसके बाद में उका कंडा के मध्यम आँच में उका सेका जाते है। तो भौरी जो है एक पूर्णता के प्रतीक है। देखो भौरी गोल गोल बनावा जाते चंद्रमा के टाइम से, और दिन जो है पूर्णिमा होते है, और उका गुरु पूर्णिमा कहा जाते है। पूर्णिमा में पूर्णिमा के मतलब है पूर्ण, सब चीज के पूर्ण, तो उके भौरी के आकार भी पूर्णिमा था ना बनावा जाते। और एक विशेष महत्व ये है कि ये भौरी जो है तो उन कोई कमरा में यहाँ या कोई और जगह नहीं, इके बनावे के अवधि परंपरा में क्या है कि गोठ में यहाँ घारी में जी का कहा जाता
0: है, में बनाया जाता है।
2: गोठ भी कहा था मगर हम लोगन के अवधि समाज में इका घारी कहा जाता है। घारी में यहाँ कहा जहाँ गाय भैंस बांधे जाते हैं, पड़वा पड़ी रहा था, तो वो जगह बनावा जाता है। अब बनाए के और एक भौरा बड़ा बड़ा बनावा जाता है, भौरा कह दे बड़ा, तो वो जय जना जय जैसे बैल हैं दुई ठोरे, तो एक एक ठो बैल का तीर बनाया जाता है। भैंस है तो भैंस का तीर, और भैंसा है तो भैंसा का तीर। काहे से ई लोग जो है हम लोगन के कृषि उत्पादन करे के लिए सहयोगी अंग के रूप में होते हैं। तो गोवंश के जितने हैं वो सब हम लोगन के पूजनीय होते हैं, उनका आदर किया जाता है, और उन्हीं से पहले अनाज मिलता है, उन्हीं वही करत। आज तो ट्रैक्टर ट्राली हुई गवा है, हर के जगह पर यह और सब चले लगा, लेकिन पहले वही गोवंश से ही तो उन खेती किसानी होता है,
0: उपजाऊ होता
2: है। यही मारे इनके ज़्यादा महत्व रखा जाता है, और इनका खवावा जाता है, और इनके जो है एक प्रकार से पूजा किए तना हो जाता है, तो इससे इनका कोई रोग बाधा नहीं लागत है। हाँ इनके इनका पहला भौरा उन्हीं लोगन का दिया जाता है, फिर भौरी और घी से चोपर दिया जाता है, उनका मुलायम भी हो जाए। और इसके बाद उनके साथ में चोखा बनावा जाता है। हाँ चोखा कैसे बनाता है कि भाई बैगन भूज लीन, आलू भूज लीन, हाँ टमाटर कहीं तो कई सब कहीं बढ़िया से
0: एकदम मिलाए,
2: एकदम मिलाए के और इके बनाई नहीं, बात कर तो मुंह में पानी आ गया। अगर खटाई नाम लो पानी ना हो तो फिर बेकार है, समझो
0: बेकार है, मजे नहीं है और का सही बात।
2: तब इका खाओ तो आनंद। लेकिन यही साथ में एक और चीज जुड़ा है, भौरी मैया अपने बिटिया दमाद का बुलावा जाता है,
0: अच्छा।
2: समझी लोगन का बुलावा जाता है,
0: न्योता दिया जाता है।
2: ये परंपरा जुड़ा है, देखो कहत नहीं है जाई थे भौरी खाए, समधियान जाई थे भौरी खाए। जैसे सावन में बिटिया बुलावा जाता है, तो इमा समधी समधीन के यहाँ बुलावा जाता है। हाँ
1: घर परिवार बिटिया हो,
2: हाँ बिटिया बिटिया बहन है तो उनका बुलावा जाता है। हाँ
0: लेकिन ज्यादा प्रचलन जो है समधी समधीन
2: जो है आवत खात पियत है, तो एक आत्मीय संबंध भी होगा और त्योहार ईमेल मनावा जाता है। तो भौरी
0: मतलब घर परिवार मिल के
2: हाँ,
0: मनावा जाता है
2: कोई भी त्योहार,
0: कोई भी त्योहार
2: जब तक परिवार के सब लोग मिले ना तो आनंद ना
0: आनंद भी ना रहता तो सुना सुना भी लगता है,
2: और खाए पिए के कोई मतलब
0: कोई मतलब नहीं है।
2: तो हर त्योहार का वही मेरे से खुशहाली के साथ मनावे का चाहिए। ये हम लोगों के अवधि परंपरा के एक सकारात्मक सोच
0: सोच है। तो बहुत अच्छा लगा है ना सखी, हाँ, जो ये भौरी के बात सुन के और
1: इंतजार तो भी बात है। सुने हैं ना आप तो पहले
2: भौरी आपकी
0: चौदह तो कहाँ करी तो हम अब रखा रहा है तो खा लिए
2: भौरी चौदह गते भरी अपन बनाए
1: बनाए वाला है
0: तो थोड़ा सा खाए रहे ना खाली पूरा ना खा सही कर खाई लेवे ना नहीं मतलब खाई
1: पे देखो अच्छा से खाई धीरे धीरे अपने आप चोर चिल्लाते कर तब सही कर खाई लेवे पूरा खाए रहे
0: भौरी वाले दिन तो खाइबे करबे ना
1: भौरी वाले दिन तो सबको खावा जाए
0: सब
2: लोग
0: आप लोग भी आवाजी हम लोग सब मिलके खावा जाए बहुत मजा आई है ना
1: संपूर्ण सखी और श्रोता लोग सबका न्योता है। अब आवे वाला जो गुरु पूर्णिमा है भौरी के दिन सबका न्योता रही और सबको एक दूसरे का भी खवावा जाए है नी कहे से जते हम लोग एक दूसरे का बांट के खवावा जाए उतने माया और प्रेम मोह ममता बढ़ते जाए तो सबका हम लोग संगोल में रखा जाता है। घर अंगना तो है ये है और आज घर अंगना के गठरी हम लोग किनारे रख दिया गया है जब सबसे बड़े गठरी इतने बैठे तो हम लोग गठरी आज कौन काम
0: कोई जरूरत नहीं
1: लेकिन आपके घर अंगना में हम लोग बैठे हैं तो ऐसे सुनते ही रहा जाए तो कार्यक्रम के चर्चा के साथ है ना बोल दी
0: ना बोलो ना बोलो बोलो
1: कुछ कहबे हो
0: आप कहे जाते हो बोलो ना
1: तो हम तो वही कहबे
0: हाँ बस चला जाए व्यापारी अरे गीत के तरफ है ना तो ठीक है गीत के तरफ चला जाए बस थोड़ा सा हाँ व्यापारिक विश्राम की तरफ चला जाते हैं
1: हाँ बस तो यही तो कह रहे ना आप बोल दो चलो फिर
3: अब सुन्नुहोस् श्री स्टील्स रेडियो कथा तेस्रो तथा अंतिम भाग शर्माजी को घरलाई भूकम्पले हल्लाइरहेको छ झ्याल बाहिर धुलोले ढाक्छ बत्ती फोन सबको लाइन काटिन्छ सब धेरै डराएका हुन्छ तर एकछिनमा भूकम्प रुकिन्छ शर्माजीले श्री एफई 550D ले बनाएको घरलाई फेरि केही भएको हुँदैन अनि त्यसपछि शर्माजीको परिवारको जिन्दगी ढुक्कले चल्न थाल्छ अनि वर्षौँ पछि फेरि एक दिन ठुलो भूकम्प आउँछ श्री एफई 550D सर्वोत्कृष्ट भूकम्प प्रतिरोधक स्टील
4: वाओ प्लस टू परीक्षा पनि पास भयो अब कुन कलेजमा भर्ना हुने होला
5: ल है बधाई छ अनि तिम्रो उज्जवल भविष्यका लागि उत्कृष्ट विकल्प नेपालगञ्ज बहुमुखी क्याम्पस एनएमसी छ नि
4: ए हो र त्यहाँ के पढ्न पाइन्छ त अनि त्यहाँको विशेषता पनि भन्देऊ न
5: त्यहाँ ब्याचलर अफ बिजनेस स्टडीज बीबीएस तथा एसीसीए कार्यक्रमका लागि भर्ना खुला भइसकेको छ दक्ष तथा अनुभवी शिक्षकद्वारा गुणस्तरीय शिक्षण वातानुकूलित एसी कक्षा कोठा समृद्ध पुस्तकालय अतिरिक्त क्रियाकलाप नियमित फिल्ड भिजिट तथा औद्योगिक भ्रमण आधुनिक शिक्षण वातावरण र विद्यार्थी मैत्री व्यवस्थापन सहित आफ्नो उज्जवल भविष्यको यात्रा सुरु गर्न सकिन्छ
4: ल तिमीलाई धेरै धेरै धन्यवाद त्यसो भए म पनि यही भर्ना हुन्छु
6: हजुर प्लस टू परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण गर्नुभएका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना उच्च शिक्षाको उत्कृष्ट गन्तव्य नेपालगञ्ज बहुमुखी क्याम्पस एनएमसीमा ब्याचलर अफ बिजनेस स्टडिज बीबीएस तथा एसीसीए कार्यक्रमका लागि भर्ना खुल्ला भइसकेको छ
4: नेपालगञ्ज बहुमुखी क्याम्पस एनएमसी आदर्श ग्रुपद्वारा सञ्चालित ठेगाना नेपालगञ्ज 10-12 औद्योगिक क्षेत्रको ठिक अगाडि थप जानकारीका लागि सम्पर्क 98 580 36 577 98 580 28 195 र 98 580 36 811 नेपालगञ्ज बहुमुखी क्याम्पस एनएमसी सफल भविष्यको बलियो आधार
7: आज म एकदम खुसी छु
8: हैन आज किन यसरी हाँस्दै आएकी छौ त
7: आज मैले रेडियो कृष्ण शर्मा एउटा राम्रो कलेजको विज्ञापन सुने मलाई त्यहाँको विशेषता एकदम मन पर्यो म त भुल्लिनै बाबालाई भनेर जान्छु
8: ए हो र ल ल भन न त तिम्रो रोजाई कस्तो रहेछ हामी पनि जानौँ
7: ल सुन त्यहाँ त गुणस्तरीय शिक्षा आधुनिक प्रविधिद्वारा अध्यापन र आफ्नै भवन सहित अत्याधुनिक सुविधा भएको नेपालगञ्ज 12 अवस्थित जिएम कलेजको बीबीएस प्रथम वर्षमा नयाँ भर्ना खुलेको रहेछ अनि त्यहाँ त सिप अभिवृद्धिका लागि नियमित तालिमहरू पर्याप्त अतिरिक्त क्रियाकलापहरू जेहेन्दार विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति एजुकेसनल टुर सिए काउन्सिलिङ क्लास सञ्चालन मोटिभेसनल क्लास आइसिटी क्लास एसी क्लासरुम इन्डस्ट्रियल फिल्ड भिजिट क्रिकेट मैदान बास्केटबल कोर्ट तथा अन्य खेलकुदका क्रियाकलाप क्यारियर काउन्सिलिङ जब प्लेसमेन्ट तथा क्याम्पस सेलेक्सन लगायतका विविध कार्यक्रम रहेछन् यो विज्ञापन रेडियोमा सुनेपछि मैले त यही जाने निर्णय गरे। अब भन तिमीलाई मेरो निर्णय कस्तो लाग्यो?
8: हो रहेछ, एकदमै ठिक लाग्यो मलाई त। अब म पनि मेरो बहिनीलाई लुम्बिनी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी पास गराउन सफल कलेज जीएम कलेज नेपालगञ्ज बाह्र मुक्तिपुर बाँकेमै भर्ना गर्छु।
7: ल सुन, त्यसो भए 9580 40388, 9805046026 र 9850805040 आजै सम्पर्क गरेर विस्तृतमा कुरा बुझ है।
8: ल ल हुन्छ हुन्छ ल।
9: भर्ना खुल्यो।
10: यस ब्राइटल्यान्ड कलेजमा शैक्षिक सत्र 2083 लागि त्रिवीबाट सम्बन्धन प्राप्त व्यवस्थापन तथा मानविकी संकाय अन्तर्गतका स्नातक तहका कार्यक्रमहरूमा भर्ना खुला भएको जानकारी गराइन्छ।
9: उपलब्ध कार्यक्रमहरू ब्याचलर अफ होटल म्यानेजमेन्ट बिएचएम, ब्याचलर अफ इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी म्यानेजमेन्ट बिआइटिएम, ब्याचलर अफ बिजनेस स्टडिज बिबिएस, ब्याचलर अफ आर्ट्स इन सोसल वर्क बिएएसडब्ल्यू।
10: योग्यता मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट प्लस टू वा सो सरह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने, सम्बन्धित विश्वविद्यालयले तोकेको न्यूनतम जिपिए प्रतिशत प्राप्त गरेको हुनुपर्ने।
9: किन रोज्ने ब्राइटल्यान्ड कलेज?
10: बिएचएम ब्याचलर अफ होटल म्यानेजमेन्ट, अनुभवी शिक्षकद्वारा व्यवहारिक तथा गुणस्तरीय शिक्षा, इन्टर्नसिप तथा रोजगारीमा सहयोग, होटल एयरलाइन्स रिसोर्ट क्रुज लाइन लगायत आतिथ्य क्षेत्रमा आकर्षक रोजगारी र होटल फ्रन्ट अफिस फुड एन्ड बेभरेज इभेन्ट व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवहारिक ज्ञान।
9: बिआइटिएम ब्याचलर अफ इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी म्यानेजमेन्ट, सूचना प्रविधि र व्यवस्थापनको उत्कृष्ट संयोजन, सफ्टवेयर डेभलपर, आइटी म्यानेजमेन्ट, डाटा विश्लेषक लगायतका क्षेत्रमा करियर, आधुनिक प्रविधि तथा व्यावसायिक प्रमाण पत्रका लागि बलियो आधार।
10: बिबिएस ब्याचलर अफ बिजनेस स्टडिज, राष्ट्रिय विश्वविद्यालयद्वारा मान्यता प्राप्त लोकप्रिय कार्यक्रम, बैंकिङ, व्यवसाय, लेखा, वित्त, मानव संसाधन तथा सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रमा रोजगारीका अवसर र व्यवस्थापन, वित्त, बजार व्यवस्थापन र लेखा सम्बन्धी सुदृढ आधार।
9: बिएएसडब्ल्यू ब्याचलर अफ आर्ट्स इन सोसल वर्क, गैर सरकारी संस्था एनजिओ, अस्पताल, विद्यालय तथा सामाजिक संस्थाहरूमा करियरका अवसर, समाज सेवा, नेतृत्व तथा समुदाय विकास सम्बन्धी ज्ञान र सिप, समाजमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने अवसर।
10: ब्राइटल्यान्ड कलेजका विशेषताहरू, अनुभवी तथा दक्ष प्राध्यापक, कक्षा कोठामा स्मार्ट प्रविधिको प्रयोग, एयर कन्डिसनर, एसीको सुविधा, समय सापेक्ष तथा रोजगारमुखी पाठ्यक्रम, इन्टर्नसिप तथा प्लेसमेन्ट सुविधा, आधुनिक शिक्षण वातावरण र सफल पूर्व विद्यार्थी सञ्जाल तथा करियर परामर्श।
9: नोट, बिएचएम र बिआइटिएम को सिमेट फार्म पनि खुलिसकेको जानकारी गराइन्छ। सम्पर्क ब्राइटल्यान्ड कलेज, नेपालगञ्ज 10 पासाङ लामु रोड, फोन नम्बर 081532207 र 081532602, इमेल blc.npj@gmail.com, वेबसाइट brightlandcollege.edu.np।

0: sip on ya.
1: Extreme energy drink.
2: नाक कान र घाँटीका रोगीहरूको लागि विशेष सूचना।
3: भेरी अञ्चल अस्पतालमा लामो समय काम गरी सेवा निवृत्त प्रमुख कन्सल्टेन्ट ईएनटी विशेषज्ञ डाक्टर रमेश कुमार श्रेष्ठ र हाल भेरी अञ्चल अस्पतालमा नाक कान घाँटी विभागमा कार्यरत ईएनटी कन्सल्टेन्ट डाक्टर सगुन श्रेष्ठसँग उपचारको लागि मिलिजुली मेडिकल हल इदगाह रोड नेपालगञ्जमा हप्ताको सातै दिन सेवा उपलब्ध छ। हाम्रा थप सेवाहरू एक्सरे, इन्डोस्कोपी, प्रयोगशाला, अडियोग्राम तथा आवश्यक परेको खण्डमा बिरामीलाई अपरेसनको पनि व्यवस्था छ। विस्तृत जानकारीको लागि मिलिजुली मेडिकल हल इदगाह रोड नेपालगञ्ज, सम्पर्क फोन नम्बर 081531380, मोबाइल 98580304 र 98481380।
4: अम्मा के दवाई करावे के लेकिन समझ में नहीं आवत है कि कौन अस्पताल में ले जाए।
5: कांति आरोग्य अस्पताल है ये है, काहे चिंता लेत हो। पश्चिम नेपाल के अनुभवी और उत्कृष्ट विशेषज्ञ तथा शल्य चिकित्सक द्वारा विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवा भी यहाँ उपलब्ध है।
4: ए, अच्छा, मनी अस्पताल में यहाँ कौन कौन सुविधा है? तो
5: 24 घंटा इमरजेंसी सेवा, दैनिक ओपीडी सेवा, दूरबीन और लेजर प्रविधि से शल्य क्रिया, जले घाव के उपचार करे साथ NICU, PICU, ICU, हाईटेक ऑपरेशन थिएटर, सुरक्षित प्रसूति सेवा, बाल बालिका और नवजात बच्चन के सामान्य रोग से लेके जटिल रोग तक सब मेर के उपचार भी उपलब्ध है।
4: अस है तो अम्मा कहीं आजा लेके जाए थे कांति आरोग्य अस्पताल में। यहाँ
5: कांति आरोग्य अस्पताल सुर्खेत रोड नेपालगंज, सब मेर के उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा एक छत के नीचे। संपर्क नंबर 081535717।

0: चाचा आप तो भौरी हमका लोगन का ये सखिया तो हमार खाए लेहिन
1: हां
2: हां अरे हम तो रखे खाइबे कहां की
0: अब हम लोगन का जैसे भौरी तो अब 14 गते कहा जाता है आवे वाला है
3: बिल्कुल
0: हां सके
3: अब आज 10 गते 9 गते होइन गा
2: हां 9 गते
3: पांच दिन तो बाकी है
0: और कहा था कि जैसे सावन जैसे शुरू होत है सावन सोमवार के महत्व तो है ये है ओके बाद भौरी आई अब का तो त्योहार है त्योहार
2: त्योहार है त्योहार है और सावन के महीना में त्योहार है त्योहार है
0: हां अब भौरी के बाद
3: एक बात और बताइए
0: हां सर
3: से सावन के जो सबसे आखिरी त्योहार होते हैं
2: जनेई पूर्णिमा
3: हां उसका भी बहुत महत्व है उसका हम लोग रक्षा बंधन कहते हैं
2: रक्षा बंधन भाई बहन के त्योहार
0: जान नहीं पाओ
2: जान पाए तभी तो हम कहें जनेई पूर्णिमा
3: अवधि भाषा में उसका सनीनो कहा
2: हां सनीनो कहते हैं हिंदी में रक्षा बंधन कहते हैं राखी बंधन
3: कहते हैं और ब्राह्मण समाज लोग जो जनेऊ ने बदलत हैं तागाधारी समाज वो लोगों का जनेई पूर्णिमा कहते हैं जनेई
2: पूर्णिमा
3: मतलब त्योहार एक है
2: के नाम
3: के नाम बहुत
2: फरक फरक है
3: नदी एक घाट बहुत तेरे था ना ओके नाम बहुत है तो रक्षाबंधन के त्योहार भी जो है वो सावन में पड़त है और अंतिम त्योहार है
2: अंतिम त्योहार है हां
0: अब पीछे में तो शायद गुड़िया चला जाए ना
2: हां पहले गुड़िया होई जी
3: पहले गुड़िया हुई
2: अभी के बाद पुनवासी के रहत है
3: अरे अब गुड़िया में यहां भी बिटिया बहन बुलावा जाते हैं
2: हां
3: गुड़िया और रक्षा बंधन में तो बिना बुलाए वो आवत है काहे से भाई वही है
0: आते बिना बुलावे आवत है पर बुलावे चाचा बिना बुलावे कहां आवा जाते
3: हैं बिना बुलाए त्योहार रक्षा बंधन होए
0: अभी
3: के भाई लोगों के कर्तव्य रहत है
2: लेकिन अंकल जो है भाई लोगन के जो है सहारा भी तो रहा था इंतजार रहा था
0: बही नहीं है
2: बही नहीं है उनके खाली कलाई सुना रहा था तो उनका इंतजार रहा था ना बहन के
0: तो ये बात रहा था ना
3: सिर्फ साल भर में यही एक त्योहार है जीमा जो है
2: जो भाई बहन के प्यार हमेशा बना रहा था
3: एक इमा और दूसरा भैया द्विजमा भी भैया द्विजमा भी बिटियन का बुलावे की नाई परत है वो आवत है उनका आना फर्ज है उनके लोगों ने कर्तव्य है
2: भाई ननियाउर है ना
3: भाई भाई,
2: भाई के घर पे जाना ही है
3: भाई के रक्षा के लिए
2: हां अपने भाई के भाई रक्षा
3: रही,
2: के लिए
3: तब तो सब चीज सदा मिला करी
2: हां जैसे कि बहन लोग अपने भाई के कलाई में रक्षा बांध जैसे रक्षा बांध के उनके रक्षा के भगवान से कामना भी करत
3: हैं करत हैं हां
2: और भाई भी अपने वचन देते हैं
0: मान लो जैसे भाई नहीं रहते खाली बहनें बहन रहते फिर भी उनका अपने मायके जायक चाहिए सब बहन
3: हां बिल्कुल
0: हां जायक चाहिए और पल और जो संस्कृति जो रक्षा बंधन है वो मनावे खातिर भी खुशियाली के रूप में उनका रखे ना सोचे कि भाई नहीं है तो हम लोगों के कौन
3: नहीं तो भाई नहीं है तो पिता का बांधा जाते रहे अपने से बड़ा क्योंकि संरक्षण ये तो रक्षा बंधन का है कि दूसर से अपना संरक्षण मांगा जाते है धागा सूत्र बांध के उसे वचन लिया जाते है कि तुम हमार रक्षा करियो तो भाई न होए पर पिता का भी बांधा जाते है काका हुआ चाचे हुए
0: हाँ
3: ये सबका बांधा जाते है तो रक्षा बंधन के जो महत्व है और रक्षा बंधन के साथ में सावन त्योहार समाप्त होते
0: हाँ।
3: और एक बात और याद रख लो शायद जानत हुई हो रक्षाबंधन के दिन वैसे तो हम लोगन के अवधि समाज में जितने भी त्योहार होते हैं वहाँ एक विशेष प्रकार के परिकार बनत है हाँ विशेष चीज जानत हो कोई बता सकत हो
0: चना
3: बताओ तो हम जाने
0: अब गुड़ियन के कहा वही मारे हमरे चना याद आवा रहा है हाँ, कि गुड़िया
3: नहीं हर त्योहार में बनत है खास करके उका कहा जाते है गुलगुला
0: ए अच्छा गुलगुला
3: हाँ अवधि समाज में गुलगुला जरूर बनत है और सावन में जो गुलगुला बनत है रक्षाबंधन का उका दूसरे दिन भादों में खावा जाते है उका कहा थे सावन रीधा भादों खाई हाँ उका बासी कह के खाए के बड़ा महत्व होते हैं
0: और बासी में बड़ी हो रहा हाँ,
3: है और उका बड़े बड़े बनाए जाते हैं और वहाँ गरी छुहारा ये सब
0: मिष्ठान
3: डाल के बनावा जाते हैं तो वो जो है पैसे से काला जाम नहीं बना थे
0: हाँ
3: वही काल गुलगुला काला जाम के ही वही हो एक
0: प्रकार
3: दूसरा रूप हो
0: बस उसका खाली चीनी में चाशनी में डाला
3: जाता है बस इकाना
0: जाता है वही से मिठास रहा था गुड़ से
3: तो इका सैगर दिन तक रख के खाते हैं लोग बांध के भी ले जाते हैं तो सावन रीधा भादो खाई कह के एक दूसरे दिन खाई के परंपरा भी है तो खावा जाते ये सबसे अच्छा परिकार के रूप में होते है और एक चीज और बनत है जिका मिठाई के रूप में खावा जाते है ओके चाउर के आटा के बनत है बताओ
2: गोला गोला
3: गोला तो है ये बड़ा बड़ा
2: वो का कहते
3: अनरसा अनरसा का अनरसा गोली कहते छोटे का और बड़ा वो का अनरसा कहते तो यही मिठाई रक्षा बंधन के दिन बहन लोग अपने भाई का खवावत है तो ये रक्षा बंधन अभी सावन में बहुत से त्योहार पड़ गए। अब त्योहारन के सिलसिला शुरू हो जाते फिर सावने से।
2: हाँ, सावने से शुरू हो जाते है। भादो में भी जो है आवत है, का आवत है सकी, तीज, कजरी तीज आवत है जगह जगह। तो भादो का महीना मतलब शुरुआत हो जाते है सावने से।
3: और सावन में झूम झाम के कहा से खेती किसानी खत्म भी हो जाते है। लोग अपन थकावट मिटावे के लिए भी त्योहार में खूब नाचत गावत झूमत है।
2: और जो है सखी लोग मिलके झूला डालत है, बिरवा मैया का झूलत है।
3: हाँ, बिल्कुल।
0: बहुत अच्छा, जैसे कहा था कि जैसे सावन में नागपंचमी के पहले बैठौनी खत्म कर देते हरेरी मनावत है।
3: पहले पहले ज्यादातर हम लोग जब छोटे छोटे रहे, हमारे लोग घर में खेती किसानी होता है तो नाग पंचमी के दिन ही अक्सर हरेरी बोला जाता है।
0: हरेरी खेलता
3: है। हाँ, एक दिन पहले या वही दिन खेलता है तो बड़ा मजा होता है। लेकिन अब आजकल पानी के समय में बरखा नहीं होते और जहाँ
0: मौसम से बदला है,
3: जहाँ मौसम परिवर्तन हो ही रहा है तो हमारे कुछ पहले भी खत्म हो जाता है। ना हुआ तो बाद तक जब पानी बरसता है तब चला कर।
0: जैसे छोटे छोटे हम लोग सुने रहे हैं कि जब गुड़िया मतलब नागपंचमी आवत है और हरेरी खेल जाता है तो जानो नागपंचमी आवा तो बैठोनी अब खत्म
3: हो गया।
0: बढ़िया से त्योहार मनाओ,
3: त्योहार मनाओ, थकावट दूर,
2: थकावट दूर।
0: लेकिन अब ये क्या है कि पर्यावरण में आपको भरोसा नहीं रहा था नहीं, अब काम चला कर बैठोनी चला करते त्योहारों बीच बीच में आए जाते हैं।
3: मौसम परिवर्तन हो रहा है धीरे धीरे
2: परिवर्तन।
3: जैसे अब की गर्मी बहुत ज्यादा रहा।
0: हाँ।
3: अब जब गर्मी ज्यादा रहा तो याद कर लो कि अब की जाड़ो बहुत ज्यादा हुई है।
0: पहले सोच, पहले
3: जब गर्मी ज्यादा है तो जाड़ो ज्यादा हुई। और जब गर्मी ज्यादा जाड़ा होते जो उन साल में उस साल आम भी बहुत ज्यादा पैदा होते। अब अगले साल आम खूब सही कर पैदा होते।
2: असो तो नाई है।
3: हाँ, असो तो नाई नहीं
0: है लेकिन
3: असो है मगर हिया नाई है, और जगह है हिया भी रहुआ ही नहीं है सब कटकुटी है।
2: तो मतलब पार साल हो जाइए।
3: अब देखा जाए जब लगाई है तब तो हो जाए। और फिर आसो लगाते खान अगले साल बिरवा तैयार।
0: मतलब चाचा के कथन है कि जैसे मान लो जब जाड़ा ज्यादा हुई तो मतलब दूसरे मौसम में आम
3: असर पड़त है,
0: जो फलन जो फलत है वो ज्यादा फरी। अब जहाँ है ये ना बिरवा कहाँ से ले ही हो आम।
3: एक मौसम के असर दूसरे मौसम पर परा करते
2: हैं। परा करत है
0: मतलब जब बिरवे न रही तो आम लइयो कहाँ से। लेकिन ये
2: बिरवा जो लगा हुआ है, जो बिरवा लगा हुआ उमाई,
0: अब कौन एक बिरवा सके आप देख लियो। अब देखियो पार्सल उमा पत्ता फरत है। हाँ ठीक, आपके नजर में जो बिरवा हुई है
2: जो बउर लगे रही है, जो हवा आवत है तेज तो उड़ाई जाते हैं, उड़ा ले जाते
0: हैं। आंधी तो आंधी खातिर तो उड़ते है
2: तो ठीक है। हाँ, थोड़ा व्यापारिक विश्राम के तरफ चला जाए।
3: हाँ,
0: चला जाए।
2: हाँ, इसके बाद जो है प्यारा सा गाना।
0: पहले मैं प्यारा सा गाना बता,
2: पहले प्यारा सा गाना सुना जाए फिर। हाय रे दीदिया, हमार टिहुनी बहुत पीरा थे, बहुत दवाई कराए डाले, नाय ठीक थे।
1: सुनो बहनी, खुशी के खबर।
4: अब ऑपरेशन के खातिर काठमांडू और लखनऊ दौरे धूपे न पड़ी। पश्चिम नेपाल में यह एकमात्र आधुनिक अल्ट्रासाउंड के सुविधा है।
1: कृपा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड में यह मूत्र और दिल गुर्दा रोग के सब ऑपरेशन दूरबीन प्रविधि के द्वारा किया जाता है। और वहाँ पेट संबंधी सब मेर के दवाई, पित्त थैली के पथरी, अपेंडिक्स, हार्निया, हाइड्रोसील, बवासीर, फीसर, भगंदर, जस पुरुष लोगन में यहाँ लिंग, ब्रिये और अंडकोश और मर्दांगनी की कमी हो एक समस्या साथ हैं, कैंसर संबंधी सब दवाई ऑपरेशन किया जाता है। और जाना थियो हाथ गोड़ करिहाव, रीढ़, टिहुनी पिराप, झंझनाहट हो, नस पिराप, झमझमाप, हड्डी टूट फूट भवा है तो दवाई और ऑपरेशन के साथ हैं प्लास्टर बांधा जात है। महिला लोगन में यहाँ सफेद पानी बहाव, महीनावारी में यहाँ गड़बड़ी, निसंतानता, गर्भवती लोगन के नियमित चेक जांच, बच्चेदानी और स्त्री रोगन के सब चेक जांच, बच्चेदानी और स्त्री रोगन के सब मेर के दवाई के

0: परफॉर्मेंस र उत्कृष्ट माइलेज का साथ सेल्स सर्विस र स्पियर्स सबै सुविधा एउटै छानामुनि साथमा फाइनान्स को सुविधा पनि
1: आजै आउनुहोस् नेपाल अटो पार्ट्स एन्ड सप्लायर्स कोहलपुर 11 बाँकी
0: हजुर नेपाल अटो पार्ट्स भरोसाको यात्रा संपर्क नंबर 98125-26711 र 98-20-18-37-86 नेपाल अटो पार्ट्स भरोसाको यात्रा
2: चर्चा छ मार्केटमा हाम्रो नाम घन्किन्छ
3: अपन स्वास्थ्य के ख्याल रखब सच्चा आत्मविश्वास होए वही से तो नेपाल परिवार नियोजन संघ बाके शाखा विगत लंबा समय से आप लोगन के सेवा में यहाँ समर्पित है
4: हमरे यहाँ पूर्ण गोपनीयता के साथन गर्भपतन परिवार नियोजन के साधन बच्चेदानी के मुंह और स्तन कैंसर के परीक्षण और यौन और प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी परामर्श सेवा उपलब्ध है
3: विशेष सुविधा
4: अब हरेक इतवार के दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संदेश आचार्य के द्वारा विशेष परामर्श और उपचारों भी पावा जाए
5: देर न कीन जाए आज स्वास्थ्य परामर्श लीन जाए पता नेपालगंज उप महानगर पालिका वार्ड नंबर 9 रामलीला रोड नापी शाखा के अगारी फोन नंबर 081-530-598

0: घास भी जो है मतलब
1: तो आपके कथन का है घासो हरे।
0: अरे गाना के तरफ रहा है,
2: खेती किसानी सब गाना हरियाली कहावत है, एक
1: हरियाली है
2: कहावत है ना, सावन फूटी हरियरी, एक ठो अवधि में कहावत है कि अगर कोई सावन में अंधा हो जाते तो बाहर मास हरियरी
0: दिखाते,
2: कहावत है
0: कहावत है, फिर वही कहावत
2: कोई न फूटे बेचारे।
1: सावन के मतलब है कि चारों तरफ हरियर हरियर देखा है।
2: बिल्कुल,
1: तो कार्यक्रम करते करते हम लोग बातचीत करते करते कार्यक्रम के अंत के तरफ आए पहुंचा गया है।
0: हाँ सकी लेकिन सकी एक बात याद है, जो भौरी के नाम जब अरे चाचा जी बताई ने नहीं, तो ये भौरी वाले ही दिन से मतलब हम बताए थे ना अपने अपने बारे में बताई थे ना,
1: बताए हम ध्यान से सुनी थे,
0: तो का है ना ई भौरी वाले ही दिन से
2: गुरु पूर्णिमा
0: गुरु पूर्णिमा वाले दिन से
1: हम हिंदी सिखावे पे वैसे भी कोई बात नहीं, आप हैं बैठे
0: देखो भूल जाइए कुछ हम
1: छुपाएंगे
0: तो ई गुरु पूर्णिमा के दिन से हमका जैसे ई क्षेत्र में आवे ई मतलब ई क्षेत्र में काम करे 20 साल होते
1: हमका लगा था
2: 20 साल हो जाई अब 21 साल लग
1: गई मतलब चाचा देख के आपको सोच के पीछे में याद कर रहे हो
0: चाचा जी जब भौरी के नाम लिए ना और गुरु पूर्णिमा के नाम लिए तो हमका याद आया कहा जब बैठे लगो ना तो याद आ ही जाते बात जब करे लगो तो याद आ जाते तो शुरुआत हम जो है ये मतलब इस क्षेत्र में यहाँ संचार क्षेत्र में यहाँ शुरुआत हम जो है गुरु पूर्णिमा से ही करे रहे
2: हो, यानी अभी तुम 21 वर्ष की होगी वाली बालिक 14 गते 21 बरस के बालिक हो जी
1: बालिक हो जी कुछ दिन बचा है 4-5 दिन उसके बाद ही बालिक हो जाइए। आप चिंता ना करो आपका हम लोग विशेष दिन बनाए देबे उस दिन 20 साल का आपके पूरा हो जाइए 21 साल लाग जाइए तो 21 साल जब लाग जाए तो आपका हम लोग घोषणा करा जाए।
2: बधाई और शुभकामना सब, अग्रिम शुभकामना बधाई
1: चाचा, आज अग्रिम शुभकामना आपका दे दी ने।
2: अच्छा यहू बता दो कि जब शुरू में गई रहो या शुरू किए रहो तो कार्यक्रम के नाम का रहा है,
0: कार्यक्रम के नाम रहा है शुरुआत में यहाँ गठरी मुठरी जो कि भेरी एफएम से चलाए थे, सातों दिन के प्रोग्राम रहा था
1: यही मारे तो सकीम सोच के
0: और जो है
2: अकेले चला वो
0: नहीं अकेले नहीं और वो सात मैया हम तो चलाए रहे लेकिन हमरे जो है विष्णु चाचा ही रहे सात मैया जो हमने हौसला बढ़ाई गुरु हमरे तो हौसला बढ़ाए ना आगे जो है मतलब इमा बढ़े खातिर तो आज उनके आशीर्वाद से मुकाम।
2: अच्छा एक बात रहा है उस समय ही चाहे उस समय रिक्शा भी बहुत कम चलता है मगर ये सारी गठरी मुठी लाद के पहुंच जाता
1: है
2: पहुंच जाता
1: है नाम बढ़िया रहा है कार्यक्रम के गठरी मुठी और इनके मुड़े लदा भी रहता है इसे चलावे के का तैयारी करे
2: ना चिट्ठी पढ़ता है कि पूछो ना और कभू कभू तो पहाड़ पे एक चींटी चढ़ी
0: फिर उतर गई
2: फिर चढ़ी फिर उतर गई बस
1: ऐसे
0: कोशिश करता रहा चढ़े खातिर मार मार गिर जाता रहा ऐसे इंसान का भी कोशिश करते रहे चाहिए
1: बस आपके चढ़ाई कहाँ तक पहुँचा मूल्यांकन हम लोगों के नजर में है ये है और कहा नहीं जाते कि जब रेडियो के जब शुरुआत भवा रहा है रेडियो जब उस क्षेत्र में उस समय है नहीं सखी उस समय के महत्व का रहा है कैसे रहा है आज भी हम लोग का फील करा जाता सोचा जाते है नहीं? कि आपका तो 20 साल तो हो गया है आपके अपन अनुभव तो आपके पास है ये है कि श्रोता लोग भी चिट्ठी
2: चाहने वाले ज्यादा हैं
1: हाँ फिर कहाँ एफएम में कहाँ जाए के मिले है चिट्ठी कहाँ का देख है और एक एफएम में ना सारे एफएम
2: अमरलाल सोनी जैसे
1: अमरलाल सोनी जो हम लोग के नियमित श्रोता हो हर कार्यक्रम के
2: राकेश आर्या
1: आप एफएम में रहे हो आप हम कहाँ एफएम में रहे लेकिन हर जगह उस श्रोता का हम लोग सब लोग पहचाना जाते हैं नियमित श्रोता है तो ऐसे कुछ श्रोता हैं हमारे लोगों के कि हम लोग का अभी तक याद है याद करत भी है
2: मिथिलेश जयसवाल भज्जा पुरवा गाय घाट वाले
1: महेश यादव
2: महेश गुप्ता ये सब लोग
0: अगर गिनती गिना चाहिए ना अंकल तो उराई नहीं
2: ना उराई बहुत है
1: तो ऐसे हम लोग ऐसे
0: मगर समय उराई हुआ लेकिन अब बात
2: अब आज तो भिजा लेक पड़ा ना साथी लोग
1: सही बात है अब हमारे के बात तो नौ बराए कहे से पुरान दिन याद आए जाते हैं और जैसे आप गुरु हो के सिखावा गई मुकाम में पहुंची हमरे सखी तो वो जो खुशियाली होते हैं अंदर से वो व्यक्त कहीं नहीं मिलत है कि अब कत्ता कहा उतने कम पड़ जाते हैं तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आवा गया है
2: आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद की 20 बरस बाद हम जानो फिर से आज भेंट करे चंदा से चांद के प्राप्ति करना बड़ा दुर्लभ होता है।
1: अब आप जब सिखाए के जो इंसान का 20 साल खुद अपन अनुभव बटोर चुके हैं तो सोचा जाएगी आपके हस्ती ऐसे आपके चेला लोग कहाँ कहाँ ऐसे पहुँच गए हुई है, लेकिन आप उनके प्रति क्या कहा चाहा जाता है, दुई शब्द और रख दिन जाए।
2: हम तो चाहे थे कि दिन दूना रात चौगुना प्रगति करे, वैसे जो देखो ये पहले खाली एक कार्यक्रम संचालिका सहयोगिका के रूप में रहे और अब धीरे धीरे प्राविधिक में भी आ चुकी। अब हम तो यही कोशिश करबे कि स्टेशन मैनेजर होके जो है ये उन्नति करें और हाँ और अवधि समाज का जो है अपने भाषा साहित्य कला संस्कृति का कैसे आगे ले चलें अपने साथी लोगन के साथ में, यही शुभकामना है हमारा।
1: धन्यवाद है चाचा। ऐसे से कि आप अपन गुरु का सामने देखा जाता है, आप वही मुकाम माते जगह पहुंचे गवा गा 20 साल हो ही गवा है, तो ऐसे चाचा का आपका शुभकामना देख चाहा जाता है।
0: बस ऐसे चाचा जी के आशीर्वाद हम लोगों के साथ हमेशा बने रहे और उनके जो आदर्श जो मतलब जो उनके मार्गदर्शन है जो जहाँ हम लोगों के कुछ कमी कमजोरी है तो वहाँ कमी कमजोरी का बतावा जाए, कैसे हम लोग और आगे बढ़ा जाए, है ना, ये हम भी कही चाहते हैं। और हमेशा हमारे चाचा जी हमेशा स्वस्थ रहें और उनके आशीर्वाद हम लोगों का मिलते रहे।
1: धन्यवाद है और सही बात है चाचा कही नहीं कि आप पहले एक संचालिका के रूप में पढ़ने रहे हो, धीरे धीरे आप कार्यक्रम चलाव सीखे हो, कार्यक्रम प्रसारण करे लागे हो, उसके बाद आप प्राविधिक में गए हो, ऐसे आपके भी प्रगति होते गवा है और आगे भी ऐसी प्रगति होते जाए। और चाचा का भी हम अपने व्यक्तिगत तरफ से कि हम लोग जब से ये क्षेत्र में आए हैं तब से आपका जाना जाता है, आपके हर चीज़ हर कला का जानकारी है हम लोगों का, कई संस्थान में आप आबद्ध हो जानकारी है, ऐसे आप हमारे बुजुर्ग जो हमारे पिताश्री हैं उनके भी आप दोस्त हो ना कहीं से हमारे लोग के नाता जुटा है, यही पहचान के साथ है। आप ही कार्यक्रम में अपन अमूल्य समय दियागा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है।
2: सबका नमस्कार
1: और आपका भी आपके स्वास्थ्य हमेशा और अच्छा रहे, हमेशा अपने आपका ठीक समझा जाए, स्वस्थ रह जा, हम लोग के आशीर्वाद ऐसे देते रहा जाए। तो यही कहते हैं संपूर्ण
2: राम
1: राम संपूर्ण श्रोता लोग, आप लोग आज के कार्यक्रम सुनागा, आपका कस लाग अपन प्रतिक्रिया अवश्य दिया जाए और हमारे लोगों के कार्यक्रम जो छोटा मोटा जो वीडियो बनी ये वीडियो का भी हम लोग अपने फेसबुक जैसे कृष्ण सार के पेज है वहाँ पोस्ट करा जाते हैं और उसके बाद यूट्यूब में भी जाते हैं। यूट्यूब के साथ साथ हमारे लोगों के जो व्यक्तिगत आईडी है जैसे हमारे संध्या हमारे सखी चंदा उनका भी हम लोग शेयर करा जाते हैं, फिर अन्य साथी लोगों का टैग करा जाता है मतलब फेसबुक से जोड़ा जाता है। तो आप लोग जो जो जुटा गया है और ना जुटा गया हो तभी कार्यक्रम देखा जाए सुना जाए और कुछ मनन किया जाए कि ऐसे देखा जाए देखते देखते 20 साल बीतेगा तो ऐसे कत्ते न जाने कत्ते जना हुई हो जो आपके पास कत्ते अनुभव हुई है जो दबा चला गया है उसका उजागर करे कत्ते नया विषय वस्तु हम लोगों का जरूर दिया जाए, हम लोगों का ऐसे साथ देते रहा जाए, यही कहते संपूर्ण श्रोता और सखी लोगन का बहुत बहुत नमस्कार है और धन्यवाद है। और सावन के ऐसे मजा लेते रहा जाए, हरियाली मनाते रहा जाए, शुभकामना देते रहा जाए, तो आज हम लोगों का विदा दिया जाए, है ना सखी?
0: हाँ हाँ ठीक है। राम राम
2: राम
0: राम, राम, राम, राम, राम
1: शुभ दिन, नमस्कार
0: नमस्कार।

0: मेगाहर्ज कृष्णसार जत्तिकै तेज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 3 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील

0: आसानी से भुगतान प्राप्त करा जाए। नेपाल पे QR, नेपाल का अपने QR।
1: हमका बिहा के खातिर सोफा दराज डाइनिंग जस सामान और ऑफिस के खातिर सामान खरीदे रहा है, कहाँ जाये तो ठीक रही, तनी बताई दियो हमका।
2: सुना जाए आपका हम बताई थे, आप नेपालगंज में यहाँ अपने घर के खातिर, ऑफिस या तो दुकान के खातिर गुणस्तरीय फर्नीचर खरीदे चाह जाते है तो अर्बन फर्नीचर एंड फर्निशिंग हब प्राली में यहाँ जावा जाए। वहाँ पर यहाँ आर्डर के अनुसार बेड, सोफा, डाइनिंग टेबल, ऑफिस टेबल, ड्रेसिंग टेबल, दराज, जस तमामन मेर के फर्नीचर के सामान मिलत है। उके साथन टिकाऊ सामान, आकर्षक डिजाइन और उत्कृष्ट फिनिशिंग के साथन बनावा भी जाता है।
1: किफायती मूल और मैत्रीपूर्ण सेवा के साथन आपकी आवश्यकता के हिसाब से फर्नीचर तैयार किया जाता है।
2: एक दफी सेवा करे मौका दीन जाए। संपर्क के खातिर सुर्खेत रोड नेपालगंज बांके, संपर्क नंबर 9844885375 और 9808254037।
3: नींद ना हमको हाय जग
4: सोना। बीर डेंटल, बीर डेंटल, बीर डेंटल।
5: नेपालगंज शहर में संचालित अत्याधुनिक सुविधा संपन्न बीर डेंटल में दांत तथा मुख संबंधी संपूर्ण उपचार काठमांडू तथा भेरी अंचल अस्पताल का अनुभवी वरिष्ठ डाक्टर आर के लामिछाने द्वारा उपचार गरिन्छ।
6: डाक्टर लामिछाने द्वारा गरिने विशेष उपचारहरू, दाँत सफा गर्ने, दाँत भर्ने, दाँत निकाल्ने, दुखेको दाँतको जराको उपचार, खाली ठाउँमा दुरुस्त प्राकृतिक जस्तै नक्कली दाँत राख्ने, बाङ्गो टिङ्गो तथा नमिलेको दाँत फिक्स अर्थोडन्टिक प्रविधिद्वारा मिलाउने, गिजाको रोग जस्तै गिजा सुन्निने, रगत आउने, पिप बग्ने, मुख गनाउने र दाँत हल्लिने समस्याको उपचार, पहेलो खैरो दाँत, सानो र ठुलो दाँत, छिद्रा तथा ग्याप भएको दाँतलाई कस्मेटिक उपचार प्रविधिद्वारा राम्रो बनाउने, दाँत मुखको चोटपटक तथा बङ्गारका हड्डी भाँचिएको पनि उपचार हुने।
5: सम्पर्क बीर डेन्टल क्लिनिक भेरी अञ्चल अस्पतालबाट 150 मिटर त्रिभुवन चोक तर्फ।
6: फोन नम्बर 081-532-375।
1: बाबा के कान पीरा थे, दवाई करावे खातिर कहाँ ले जाई?
7: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहर केंद्र जाओ न, यहाँ अनुभवी विशेषज्ञ और वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राधिक लोगन से हर एक दिन कान परीक्षण किया जात है। इतन कहाँ, यहाँ तो लंबे समय से कान पकते आवा, जीर्ण रोग, कान में ढूसी भवा, कान खजुआब, कान से कम सुनाई देव, कान बंद हो, बीमारी लोगों के दवाई दरमत और सुझाव सलाह देते हैं। और साथन लंबे समय से कान पकते आवा, कान के जाली में छेद भवा, कान के हड्डी गले वाला रोग के शल्य क्रिया द्वारा दवाई करत हैं। साथन कान कम सुनने वाले बीमारी लोगों के यहाँ कान में लगावे वाला सस्ता से लेके महंगा महंगा तक मेरे मेरे के मॉडल के कान की मशीन हेयरिंग एड बिरामी लोगों के इच्छा अनुसार उपलब्ध करावत है। BTE, CIC, RIC जैसे मशीन भी यहाँ उपलब्ध है।
1: ए अस है तो बाबा के यहाँ ले जाए के दवाई करावे से बढ़िया से सुने लगी है तो?
7: हाँ तो समय में यहाँ दवाई करावे से दवाई दरमत संभव है। बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहर केंद्र प्राली, नेपालगंज 6 फुलटेग्रा, आर्मी ब्यारेक के सामने, राप्ती रोड बांके। संचालक पूरन चौधरी। संपर्क नंबर 9848-2697, 9858-23697 और 9814-83697। बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में यहाँ सहभागी हुआ जाए, नियमित रूप से कान के जांच करावा जाए।
1: भैया बहुत दिन से महिनवारी में यहाँ गड़बड़ी, सफेद पानी बहाव और पेट पीराव समस्या से बहुत दुख पाए चुके हैं, कहाँ जाए तो बढ़िया रही?
7: हम भी पहले गैस्ट्रिक, बवासीर और पेट के समस्या से बहुत परेशान रहे, बाद में यहाँ नेपालगंज के मेडिकेयर क्लिनिक गए। वहाँ मर्दे और मेहरुए दोनों लोगों के समस्या के उपचार और ऑपरेशन एक ही जगह होता है। अनुभवी विशेषज्ञ डॉक्टर से सेवा मिले के बाद अब बहुत आराम हुआ है।
1: सही, वहाँ का सेवा मिलत है तो भैया?
7: सुनो, वहाँ औरतन के बांझपन, सफेद पानी, महीनावारी में गड़बड़ी, गर्भवती जांच, बच्चादानी और स्तन संबंधी समस्या के उपचार होते है। और पुरुष या अन्य बीमारी लोगों के खातिर गैस्ट्रिक, बवासीर, हर्निया, अपेंडिक्स, थायराइड, पित्त थैली और शरीर में यहाँ गिल्टी और तमाम मेर के लैप्रोस्कोपिक और लेजर सर्जरी सेवा भी उपलब्ध है।
8: हाँ, मेडिकेयर क्लिनिक में यहाँ वरिष्ठ लैप्रोस्कोपिक दूरबीन और लेजर सर्जन डॉक्टर कमर हसन अंसारी और वरिष्ठ लैप्रोस्कोपिक स्त्री और कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमीरुन निशा से सेवा देते हैं। आप भी आज कोई भी चेक जांच और ऑपरेशन के खातिर नाम दर्ता कह के तहदिल हुआ जाए।
7: मेडिकेयर क्लिनिक नेपालगंज उप महानगरपालिका वडा नम्बर 11 बीपी चौक के नेरेन उप महानगरपालिका के कार्यालय के लाइन में यहाँ संपर्क नंबर 97649 11786 98224 92377
9: सबके संयुक्त आवाज मेडिकेयर क्लिनिक मर्दे और मेहरुए दोनों लोगों के स्वास्थ्य उपचार के विश्वसनीय गंतव्य।
10: Back to back.

0: भैया हमार टिहुनी बहुत पिरात है, बहुत दवाई कराए डाले, नाई ठीक आते।
1: सुनो बहनी, खुशी के खबर,
2: अब ऑपरेशन के खातिर काठमांडू और लखनऊ दौरे धूपे न पड़ी। पश्चिम नेपाल में यह एकमात्र आधुनिक अल्ट्रासाउंड के सुविधा है।
1: कृपा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड में यहाँ मूत्र और दिल गुर्दा रोग के सब ऑपरेशन दूरबीन प्रविधि के द्वारा किया जाता है। और हुआ पेट संबंधी सब मेर के दवाई, पित्त थैली के पथरी, अपेंडिस, हार्निया, हाइड्रोसील, बवासीर, फीसर, भगंदर, जस पुरुष लोगन में यहाँ लिंग, ब्रिय और अंडकोश और मर्दांगनी की कमी हुए समस्या साथे कैंसर संबंधी सब दवाई ऑपरेशन किया जात है। और जाना थियो हाथ गोड़ करिहाव, रीढ़, टिहुनी पिराप, झंझनाहट हो, नस पिराप, झमझमाप, हड्डी टूट फूट भवा है तो दवाई और ऑपरेशन के साथ प्लास्टर बांधा जात है। महिला लोगन में यहाँ सफेद पानी बहाव, महीनावारी में यहाँ गड़बड़ी, निसंतानता, गर्भवती लोगन के नियमित चेक जांच, बच्चेदानी और स्त्री रोगन के सब मेर के दवाई के साथ ऑपरेशन किया जात है। 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: डॉक्टर प्रवीण कुमार गुप्ता, कंसल्टेंट सर्जन, यूरो सर्जन, जनरल कैंसर, मूत्र रोग तथा मृगौला रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर राहुल मिश्रा, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन, हार्ट जोड़नी तथा नशा रोग विशेषज्ञ।
1: कृपा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, सुर्खेत रोड, आदर्श नगर, नेपालगंज 10, बांके, वन कार्यालय के नेरेन, पेट्रोल पंप के पछुए। संपर्क नंबर 081-531-000।
4: आमाको उपचार गरौं भनेको कहाँ जाने होला?
5: कान्ति आरोग्य अस्पताल छँदै छ नि। पश्चिम नेपालकै अनुभवी र उत्कृष्ट विशेषज्ञ तथा शल्य चिकित्सकद्वारा विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पनि यही उपलब्ध छ।
4: हो र, यो अस्पतालमा के सुविधा छन् नि?
5: 24 घंटा इमर्जेन्सी सेवा, दैनिक ओपीडी सेवा, दूरबीन तथा लेजर प्रविधिबाट शल्यक्रिया, जलेको घाउको उपचार गरिनुका साथै एनआईसीयू, पीआईसीयू, आईसीयू, हाईटेक अपरेशन थिएटर र सुरक्षित प्रसूति सेवा पनि यही उपलब्ध छन्। अझ यहाँ त बालबालिका तथा नवजात शिशुहरूको सामान्यदेखि जटिल सबै रोगहरूको सबै किसिमको उपचार गरिन्छ नि।
4: त्यसो भए आमालाई लगेर आजै जानु पर्यो।
5: कान्ति आरोग्य अस्पताल, सुर्खेत रोड, नेपालगंज, सबै किसिमका उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा एकै छाना मुनि।
4: सम्पर्क नम्बर 081-535-717। हजुरबालाई लामो समयदेखि कानको समस्या छ, नेपालगञ्जमा भरपर्दो र विश्वासिलो अस्पतालका लागि कहाँ जाने होला?
5: ए, त्यसो भए त चिन्तै लिनु पर्दैन नि। नेपालगञ्जमै रहेको बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेवा केन्द्र छँदैछ नि। यहाँ त अनुभवी विशेषज्ञ तथा वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राविधिकबाट हरेक दिन कान परीक्षण गरिन्छ। त्यति मात्र कहाँ हो र, यहाँ त लामो समयदेखि कान पाकिरहने जीर्ण रोग, काने ढुसी, कान चिलाउने, कान कम सुन्ने, कान डम्माउने बिरामीहरूको उपचार तथा परामर्श र लामो समयदेखि कान पाकिरहँदा कानको जालीमा प्वाल परेको, कान हड्डी खाने रोगको शल्यक्रिया अपरेसनबाट उपचार गरिन्छ। साथै कान कम सुन्ने बिरामीहरूका लागि कानमा लगाउने सस्तोदेखि महँगोसम्मका विभिन्न मोडेलका कानका मेसिन, हियरिङ एड बिरामीहरूको चाहना अनुसार उपलब्ध गराइन्छ। बिटिई, सिआइसी, आरआइसी जस्ता मेसिनहरू पनि यही उपलब्ध छन्।
4: ए, त्यसो भए हजुरबालाई त्यहाँ लगेर उपचार गराउँदा स्पष्ट सुन्न सक्नु होला त?
5: अवश्य, समयमा उपचार गरेपछि धेरै सुधार सम्भव हुन्छ।
4: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेवा केन्द्र,
5: नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका, वडा नम्बर 6, फुलटेक्रा, आर्मी ब्यारेक सामुन्ने, राप्ती रोड, बाँके, सञ्चालक पुरन चौधरी।
4: सम्पर्क नम्बर 98-480-20-697, 98-580-23-697 र 98-014-83-697।
5: बहिरोपण निवारण कार्यक्रममा सहभागी हौ, नियमित कानको जाँच गरौ।
6: भर्ना खुल्यो।
5: एस ब्राइटल्यान्ड कलेजमा शैक्षिक सत्र 2083 लागि त्रिवीबाट सम्बन्धन प्राप्त व्यवस्थापन तथा मानविकी संकाय अन्तर्गतका स्नातक तहका कार्यक्रमहरूमा भर्ना खुला भएको जानकारी गराइन्छ।
6: उपलब्ध कार्यक्रमहरू ब्याचलर अफ होटल म्यानेजमेन्ट बिएचएम, ब्याचलर अफ इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी म्यानेजमेन्ट बिआइटिएम, ब्याचलर अफ बिजनेस स्टडिज बिबिएस, ब्याचलर अफ आर्ट्स इन सोसल वर्क बिएएसडब्ल्यू।
5: योग्यता मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट प्लस टू वा सो सरह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने, सम्बन्धित विश्वविद्यालयले तोकेको न्यूनतम जीपीए प्रतिशत प्राप्त गरेको हुनुपर्ने।
6: किन रोज्ने ब्राइटल्यान्ड कलेज?
5: बिएचएम, ब्याचलर अफ होटल म्यानेजमेन्ट, अनुभवी शिक्षकद्वारा व्यावहारिक तथा गुणस्तरीय शिक्षा, इन्टर्नसिप तथा

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 6 बजेको छ
2: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 7 बजेको छ
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी
2: ओइ रजनी वहाँ 62 नम्बर लट्ठी बा देखाउ त हत्ता देखाउ त
3: मुर्गिन दाना देना ब्याला म काकर लट्ठी खा जति अब न
2: एकको तपबाका मुर्गिन खा रखे लट्ठी से जुडेले से बक्सा कि आनो हारी झट्टा
3: तापन हिस्काई चलाई नि होइथि नहीं तो अमन दस सागर बेन घर भीतर आए लागी कल से भगई भी
2: पारक भीतर पेट का मुर्गी मुआडी और खाड़ी कहीं का भगाई खोज लखो का
3: आरम कीड़ा फटिंगा मुर साफ सीर निशा कर कहीं का फलाम को जारी लगा बात तब पा मुर्गी खेती बुगाई नहीं सेकी बेन अपना ना दाखी दूर रही ना
2: हो हुई ना था क्या करना हो तब पा देखती की दर नागा लगना रही था देव तब पा तो अपना घूम का बारी वो कर लिंटा
3: हमरे केल सापन से डरे ना नहीं बनी मुखरथी अमन से डरे था यदि क्यों जान अनजान में चलाई रहती प्रतिरक्षा करत लाग वा आपन बचाव करत लाग साप दस ना कथा
4: सापन से दूर रही सापन रीस नी लगाई वा नी जिसके साप मने देख डरे था नी चला कर दूर रहने से साप नी दस्त तर मुकुर खेना खाजा बाहर निस्कर में नाम घास काट बेर खाल बेर ड्यांग बेर छू बेर से मने वही मारक लाग बाटा कना समझ का प्रतिरक्षा करना क्रम में साप दस ना कर था मने सापन व्यक्ति की मारक लाग रहा था
5: सर्पदंश सम्बन्धी भर पर्दो हो सही जानकारी प्राप्त गर ओ लङ्घक सर्पदंश उपचार केन्द्र कहाँ बाकै छ पत्ता लगाएको लाग आधिकारिक वेबपेज www.snakebitenepal.org मा हेर सेतिथा
6: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्रसँगको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेसनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश
7: हाय के गर्ने होला अब सुगर पनि बढ्दैछ थाइराइडको समस्या अझ छुट्टै छ कति ठाउँमा देखाएँ तर भएन
8: ए तिमी यति चिन्तित किन के भयो फेरि
7: के भने नि डाक्टरले मलाई हार्मोनको समस्या छ भन्नुभयो अनि त्यसैमा बच्चा नहुँदा मलाई झन् टेन्सन भइरहेको छ
8: ए अब चिन्ता लिनु पर्दैन मैले राम्रो खबर सुनेको छु
7: कस्तो खबर
8: अब प्रत्येक दिन सुगर थाइराइड तथा हार्मोन रोगका विशेषज्ञ डाक्टर अल्ताबान राही एमडी इन्टर्नल मेडिसिन TU एन्डोक्राइनोलोजिस्ट सर गङ्गाराम हस्पिटल दिल्ली यहाँ नै सेवा दिनुहुन्छ
7: ए साँच्चै
8: अझै सुन महिला बाझोपन तथा निसन्तान रोग सम्बन्धी पनि प्रत्येक दिन चेक जाँच तथा परामर्श सेवा पनि उपलब्ध छ
7: ए त्यो त झन् राम्रो
8: हो नि डाक्टर पूनमाचारी MBBS एमडी KU IVF स्पेसलिस्ट इन्डिया र डाक्टर सूरज राज भट्टराई MBBS MSKU वरिष्ठ कन्सल्टेन्ट जनरल तथा ल्याप्रोस्कोपिक सर्जनबाट सेवा पाइन्छ
7: वा अब त मलाई धेरै ढुक्क लाग्यो
8: अझै अरू सेवाहरू पनि छन् दैनिक ओपिडी सेवा गुणस्तरीय फार्मेसी सेवा भिडियो एक्सरे ECG तथा सम्पूर्ण प्याथोलोजी सम्बन्धी जाँच सेवा
7: यो त पुरा प्याकेज जस्तै भयो नि
8: हो त अब ढिला नगर जाऊ आजै गइहाल उपचार गर्न
7: हजुर आजै सम्पर्क गर्नुहोस् सुपर पोलिक्लिनिक एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर बिपी चोक नेपालगञ्ज फोन नम्बर 081531860 र 081531861
8: अब चिन्ता होइन समाधानको सही ठाउँ सुपर पोलिक्लिनिक

0: 94 मेगाहर्ज कृष्णसार जत्तिकै देश।
1: सर्पदंश अथवा साँपनको कटाइमसे बाँच हो साँपनको कटाइमसे हुइसेक्ना मानवीय एवं शारीरिक क्षति विषयमा आम संचार अन्तर्क्रियात्मक रेडियो केन्द्रित अभियान जीवन सन्देश। नमस्कार। सर्पदंश से हुइसेक्ना मानवीय एवं शारीरिक क्षति विरुद्धक जनचेतना जगैना उद्देश्य लेलक अन्तर्क्रियात्मक रेडियो कार्यक्रम लहर जीवन सन्देशमा अपना स्वागत बा मै पुष्पा। रेडियो कार्यक्रम जीवन सन्देशको आज श्रृङ्खलामा हाम्रो विज्ञ व्यक्ति हुकनसे अन्तर्क्रियात्मक छलफल गर्ने बाटी। आज यी कार्यक्रममा हाम्रो वातावरणमा साँपनको महत्व, बदलती गैलक पर्यावरणले साँप जातिनमा पर्लक असर, नेपाल सरकार वन मन्त्रालय साँप सम्बन्धी करलक कामक विवरणका सँग स्थानीय सरकार सर्पदंश कार्यक्रम कसिक सञ्चालन करलबाकना विषयमा चर्चा गर्ने बाटी। मानव साँपक बीचक द्वन्द काकर हुइठा वाकर न्यूनीकरण कसिक करना ऊ यी दुई बीचक सह अस्तित्व कसिक कायम करना कना विषयमा फे बातचित गर्ने बाटी। ओ याकरसँग सर्पदंशक रोकथाम कलाक रोटरी जनचेतनामूलक अभियान सहित और बातचित फे गर्ने बाटी। आई कार्यक्रम का शुरुआत करी हमारे विज्ञ व्यक्तित्व हुकन का पूरा परिचय मसे।
2: मेरो नाम चाहिँ सबन पाठक हो। म वन तथा भू संरक्षण विभागमा चाहिँ वन अधिकृतको रूपमा काम गर्छु। मैले काम गरेको चाहिँ 30 वर्षभन्दा नै माथि भइसक्यो।
3: मेरो नाम शशाङ्क पौडेल हो। म WWF नेपालमा काम गर्छु। खास गरी मैले काम गर्ने भनेको चाहिँ वन्यजन्तु सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान र मानव वन्यजन्तु द्वन्द्वको विषयहरूमा खास गरी काम गर्छु।
4: हजुर नमस्कार, मेरो नाम निर्मल रिजाल, म रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनको निवर्तमान अध्यक्ष। अहिले म युनिभर्सिटीमा पढाउनुका साथसाथै म सोसल एक्टिभिटिजहरूमा पनि धेरै रहन्छु।
1: नमस्ते, अपनाहन स्वागत बा यी रेडियो कार्यक्रममा। कार्यक्रमको शुरूआतमा मै शशाङ्क जिहन पुछ चाहटु, WWF नेपाल साँपनको संरक्षण गर्न काममा कसिको भूमिका निर्वाह गरसेकी, स्पेसल्ली रोटरी से याकर कसिको साझेदारी गरसेक जाई, अपनाहन नेपालका सर्वदंशक विषयमा थाहा जो बा याकर विषयमा डान्से बटाडिन।
3: WWF नेपालले चाहिँ लामो
5: समय WWF नेपाल नम्मा समस्या तराई भूपरिधि कार्यक्रम अन्तर्गत बागमती लड्यासे पश्चिम कञ्चनपुरसम्म हाम्रो संरक्षित क्षेत्र हो। संरक्षित क्षेत्र से बाहर फे वन्यजन्तु हुकन संरक्षण और अध्ययन अनुसंधान का काम समुदाय से मिलकर ढ्यूर मिरिक काम करती बाटी। यही में खास कह हमार बड़ा प्रजाति हुकन संरक्षण करना कार्यक्रम होले से फे और ढ्यूर कार्यक्रम ले करबेर और छोट प्रजाति और सरीसृप जस्त आज सापन का विषय में बाट बुटी बाटी वही में फे पुगल बा। खास काम वन्यजंतु न बासस्थान व्यवस्थापन का बाट हुईलक वो वन्यजंतु हुकन मन रिस उठेना मेरी काम करना द्वंद्व क्रम में मार देना जैसे काम कम करकला बैठा वकर संग संग खोलवा नरवा सिमसार क्षेत्र हन सरसफाई गर्न ऊ स्वस्थ रूपमा आफ्नो काम गरेको हिसाबले हाम्रो ढ्युर काम कटी बाटी ऊ करबेर उहीले बडा प्रजाति हुकन काम हुइल सिफे और छोटी प्रजाति हुकन फे फाइदा पुग्छन् ऊ वातावरण मजा हुइबेर। अब अपना जोन कहिले रोटरी से मिल्ख सर्पदंश वा साँप संरक्षण गर्नमा कसिन काम खर्च जाए कैख कहबेर वाकरला काम गर्न हाम्रो कहबेर फे हाम्रो ढ्युर काम गर्नक कारणले करबेर रोटरी मसी कटिरहल कार्यक्रम हो। हाम्रो कटिरहल कार्यक्रम हाम्रो मिल्न ठाउँ सम जोर खन सँग लेख जैना होकल से जस्त सर्प कम करकलाग सापन से बचक लाग ढेपना सन्देश वा हाम्रो और जिम्मेवारी लाग त कटिबाटी तर उहीमा ऊ पाट हर्न फेरि जोर नहो कलसे उहीमा जोर जाई असीको उहीमा सँग मिल्ख काम गर्छ दिन सम्भावना थियो।
3: मिलेर काम गर्न सकिने अवसरहरू चाहिँ प्रशस्त मात्रामा छन्।
4: सबनम म्याडमलाई मेरो प्रश्न, हाम्रो धार्मिक आस्था अनुसार पनि सर्पको
6: सबनम म्याडम भन मोर प्रश्न, धार्मिक आस्था अनुसार फे सपनक महत्व बाटिन कनबाद पुरान कार्यक्रममा फे गर्ली तर प्राकृतिक रूपमा यी जौन इको सिस्टम पर्यावरणीय चक्र कठिन हाम्रा वहीमा सपनक स्थान कहाँ बा काक्र हिंक र मटपूर्णबाट एक ठो बाट द्वासर अपनेक मन्त्रालय ऊ विषयमा काकैसिन काम खर्लबा अपनेक दान्से अनुभव सुना दिन।
2: खास गरेर यो सर्पको लागि इको सिस्टममा चाहिँ असाध्यै धेरै महत्व,
7: खास गरी सापनको इको सिस्टममा एकदम ठुर महत्व रहल बाटन काक्र कि मुसक प्रजाति वाकर आहारा हुइटस ओ हिहन ऊ खैठा ओ ऊ अपना फे और जहन का आहारा बन्ठाई ऊ कारणले यी दोहोरो भूमिका खेल्ती भाई उहिले करबेर इको सिस्टममा साँप मास खेल कलसी मानव जाति फे मास जाइसक्छ कन्ना बाद यथार्थ हो। इको सिस्टमको बाट ढ्युर बा ऊ बाट बटोइलसी इको सिस्टममा यी महत्व ढ्युर महत्व रख्ठा जेहीले करबेर मानव अस्तित्व यही मजो अर्यल बाकी कनास हो। काक्र कि साँप मास जैला कलसे मनैफे मास जही ओहोरसे हिंकनक महत्व बाटन अब अट्रा महत्व हुइलक सापन वन मन्त्रालय कसिक हेर्ति बाकना अपन प्रश्नमा आवश्यक वन मन्त्रालय सापनका विषयमा छुट्टकौनो कार्यक्रम निठल्ल हो जस्तो वन्य जन्तु सम्बन्धी मेरमेरिक तालिम हुइथा ओसिन तालिममा हाम्रो सापनका विषयमा पाँच छ ठोक कक्षा धर्थी हाम्रो ग्रामीण समाजमा जाखट कल निहुटी तर सबसे पहिला कर्मचारीका क्षमता बढाइटी बाटी काकर कि कर्मचारी हुँक्र थाहा पहिला सिकेल गाउँ समुदायमा वाकर सन्धि जैना हो उद्देश्यले हाम्रो सबसे पहिला कर्मचारी तालिम डेनावर लागल हुटी तर हमार्थे वन मन्त्रालय थिए सर्प विशेषज्ञ निहुट हाम्रो सर्प विशेषज्ञ जे पिएचडी कर्तीबाट सापनका विषयमा या गाउँ घरमा फे कटरापय यी सम्पवा जौन तालिमका लागि हाम्रो प्रयोग गर्थे जौन चाहिँ फिल्डमा लैजाख देखैना अवस्थामा यी सम्पवा कसिन हो यी क्षेत्रमा कसिन कसिन साँप ठ्यौर देख पर्थ हाम्रो चाहिँ कसिको सापन से हाम्रो कसिको बस्ना अथवा सपहान मही खटरा हुइटाकना महसुस ना गर अथवा हाम्रो बस्ना हो ओहिन कसिको बची ना हो कना सिकाइक लाग हाम्रो यी तालिम फे धर्थे ओ आवक परिवेक्षमा हाम्रो का महसुस गर्थी बाटी कलसे सापन बचाई पर्था कैख वाकर लाग सक्कु प्रदेशमा तालिम ठैख तालिम दिह पर्था कना हाम्रो मानस पटलमा पैसाकल बा तर आवन सम सापनका लाग सरकारका आधिकारिक बजेट किताब रेडबुकमा चाहिँ धरनी सेक्ल हुइटी
6: ओकाले संघीय प्रदेश लेभल के कौनो फे बजेटमा परे निसेकल हो
2: अहिलेसम्म चाहिँ सर्पको कार्यक्रम पर्यो
7: आवश्यक साँप सम्बन्धी कार्यक्रम पर निसेकल हो विपट ऐना सम्बन्धी बराबर बाट पर्था काकर कि एक त बजेट फे दिन प्रतिदिन कम हुइटी गेल बा नेपाल सरकारका औरबाट बराबर जिनवार हुकन बचाएक लाग बाघ हुइल हात्ती गैंडा हुकन से कसिको बच्ना ओ हुकन कसिको बचैना कना विषयमा पैसा खर्च गर निसेकल हुइटी कलसे साँप छैहामा परल बा कि कह परे काकर कि हमार्थे उ अनुसारको बजेट कम हुइटी गइलक नेपाल सरकारका थिए बजेट कम भएको वन मन्त्रालयमा बजेट कम रठा ओहिले करबेर औ मन्त्रालय कहबेर वन मन्त्रालय त वातावरण हेर्न मन्त्रालय हो जहाँ मनका सास फेर्नासी लेख मनैया जन्मनासी मुनासँग सक्कु बाट वातावरण से सम्बन्ध रठा कना बाट थाहा हुइटी हुइटी फे वन मन्त्रालयका आवश्यकता नि हो कि का कना सुइटा सरकार फे हिमा स्वाच पर्ना हो कना मही हान्न लग्था मही मन्त्रालय बैठक व्यक्तिगत रूपमा महसुस गर्थु अलसी नेपाल सरकार फे यी बाटको
1: यहाँ उक्र डुनु जहन प्रश्न जस्ट अपना उक्र मेर मेरा कामक सिलसिलामा फिल्ड जैठी भ्रमणमा जैठी उहाँ गैल ब्यालामा अपना उक्र का देख्थी उहाँ गैलक ब्यालामा देख्लक अचम्म लग्टी चाख लग्टी कुछु बा बाकालाई से सुना दिन ओ खास कै शशाङ्क जी बदलती गैलक वातावरणले सापनका पारिस्थितिक प्रणाली हन कसिन असर पर्ला बा याकर विषयमा जना दिन
3: म चाहिँ केही समय अगाडि चाहिँ नवलपरासी नवलपुर
5: पहिला मै अपना पहिला प्रश्न बाटबाट हेटु मै को समय आग नवलपरासी आवक नवलपुर कहिन ऊ साइडमा जाइबेर मै डग्रीमा न्याङ्ठी रहन हुँ तब उहाँ जग कारोबार गर्न भने किन्ना फे बेच्ना फे गर्न भने उहाँ चौक पसलमा रह उहाँ चिया बिख बैठल बेलामा जग्गा किन आइल भनिया जग्गा किन खोजति रह उहाँसँग आइल भनिया जिन किन कैख कटी रह उहाँको कनक बाट बुझबेर औ सक्कु बाट ठिक रहन तर उहाँको कनक सबसे बडा बाट का रहन कलसे यहाँ एकदम ठ्युर साप लग्छ ओहोसे यहाँ बैठनी हुइट कना बाट रहन मनिनक छारा कैख ऐना बाटक लाग फे प्रभाव पर्नारेछन् कैख अचम्म लागल महिना सापनका कारणले फे मनिनका निर्णय प्रभावका प्रथा कना मही लागल दोस्रोमै उहाँको अगुवा पुराण मनिन फे पुस्नु म असीको असी नसिन बाट सुन्नु कैख बटुनु त उहाँको कल हाम्रो नारायणी लड्डे किनार बाटी उपसे लड्डिया भएको ऐठा हाम्रो यहाँ ऐना बेलासम्म लड्डिया चाकर बैठा ऊ बाह्रमा पुखा आइल साँप ठ्याक्क हाम्रो यहाँ टिर लग्ठ कैख कल ऊ कारणले हाम्रो बेल्टमा ढ्युस साँप हुइल भुइट कैख न उहाँको बटुल उहाँ पुराण मनिनक असिन धारणा रहेछ उही हो न इकोलोजिकल्ली साँप कसिक ऐठ कैख हेर्न बाट एक ठो हुई तर परम्परागत ज्ञानको ठजे उहाँको नक असिन देख महिना उबाट बडा अचम्म लागल हाम्रो एरिया काकर असिन हुई कनाबाट उहाँको नक थाहा रहेछ उबाट मही एकदम चाख लप्टिक लागल
6: ओसिनो कलेसे ओहिसे आर्थिकमा फे असर पर्न रहेछ
5: आर्थिक रूपमा फे प्रभाव पर्न रहेछ ऊ एक ठो बाट होइन दोस्रो बात जलवायु परिवर्तनमा सापनको गतिविधि कसिक असर पर्था कलसे काकर कलसे हरपेटो फोना जट्रा फे घसो लाख निङ्ना टाटो छ्याप अहिलेसे ढ्युर सक्रिय हुन जिनवार भिट हुकन्ट जलवायु परिवर्तनका सूचक रूपमा लेठी नै हुकनक जुन पारिस्थितिक क्यालेन्डर जुन बाटन ऊ अनुसार हुकनक क्यालेन्डर फरक पट्टि गेल बा कलसे भुइपर्ना बेलामा से फरक पट्टि गेल बा कलसे ऊ तापक्रमको कारणले कुछ घटना वा कुछ भर्ना भिठा सक्रिय होइन समय नम्मा या छोटी होइन ओसीको हुइटिबा कलसे उहाँ कुछ असर हुइटिबा कना एक ठो मुख्य सूचक हो अब हाम्रो यी बडलटिगिल परिवेशमा त टमुनामै लडेक बाट बटुनु तापक्रम ब्रह टिगिल कलसे हिउँ पग्लना भिठा ऊ हुइल कलसे पानी बहना पानी बहरनामा फरक पर्ना हुइल पानी बाढन कलसे जीव जुवा हुकनक नेङ्ना घुम्ना फेरि बरलना हुइल हुकनक आवश्यकता फेरि भर्ना हुइल हुकनक लड्का जन्मिना समय आँडा सही समयमा फुट्ना निफुट्ना फरक पर्न हुइठा हुकनक संख्या घटना बहर्ना हुइठा कटरापय प्रजातिमा त तापक्रमका कारणले मुसरा बन्ना कि मुसरिया बन्ना प्रक्रियामा फेर तापक्रमले फरक पठा कटरा तापक्रम हुई कलसे मुसरवा निक्रण कटरा तापक्रम हुई कलसे मुसरिया बन्ना हुई था हाम्रा अब जुन सापनको बाट बटुटी बाटी इतो जलवायु परिवर्तन एक ठोस सूचक जो मान पर्छ
3: वास्तवमा भन्ने हो भने यो क्लाइमेट चेन्जको त एउटा इन्डिकेटर स्पेसिस नै मान्नु पर्छ
4: र त्यसले अघि पनि भन्नु
6: अपना जौ तमना कली मनै ओ जनावर हुकन बीच डोन्न बढ्न बाट ओसिन कौनो उदाहरण बा प्रत्यक्ष कहाँ कैसी खुइल रह कौनो उदाहरण देहे सिक्दी
3: यस्तो हुन्छ अब त्यसमा चाहिँ मान्छेले बुझेर त होइन
5: हिमक कसिन हुई ठाकुर मनै बुझबुझकट नाही नै मनैनक उपर आक्रमण हुइल मनै अपनिहान असुरक्षित महसुस गर्न कलसी रिस उठ्न आक्रमण गर्न उठ स्वाभाविक हुइल जस्तो हाम्रो गाउँठाउँमा जाइबेर जस्तो कहीँ सप्प काटल कलसी उही मर्ना सेफे सप्पु हुन चिन्ह परल कैखन काकर कि बिरो कराए गेल डक्टर हुन देखाइ पर्न हुई कारणले मार्जिन बाट हुइल बसरबाट गाउँठाउँमा घटना घटस्याकल कलसी सप्प एडिक्टिक ओहो हेर्न हेराइ नकारात्मक भएजी ठा उही कलसी उही प्रतिकार गर्न कैखन उही न मर्ना उसिन मेरी कोही होइन इकोलोजिकली भाषामा कहबे प्रतिशोधात्मक हत्या कैखन कति हाम्रा उमेरिक समस्या सापनकोमा ठ्युर्बा
3: धेरै नै छ के
4: म्याडमलाई प्रश्न गरे
6: म्याडम हन प्रश्न गर्नु उन्नाइस सम्बन्धित ऊ जौन प्रतिशोधात्मक हत्या खन जौन बा ऊ अप्न बचक लाग मर्न खन बाट बाजे ऊ जनचेतनक अभावले फे हुई उहीमा म्याडमका का राई बा हाम्रा जनचेतना कसिक भ्राइसिक जै
2: यसमा मैले एउटा सानो कुरा भन्न चाहे जस्तो
7: म यहीमा एक ठो बात कह चाहटु एक छो मै फिल्ड भिजिटमा जैटिरहन हुँ जैटी जैटी एक ठो सपा डेक परल हुँ सपा डेक परल र डग्री म एकजना सात आठ वर्षक लड्का फे आफन दाइसी जैटिरहल तब ऊ लड़का अपन डाई से का कल कल से हमन काटी टोल का मन बलाई टोल का सकु मन मिलख ई सब पहन मारिक कहल काहेक मतलब का कल से सब डेक्टी की मार पर्था कना सोचाई ऊ लड़क दिमाग में बाटिन कल से उठ हमार सकु लड़कनक सोचाई में बाटी नीट उठ कल से हमारा शुरुआत कहाँ से कर पड़ल कल से घर में से कर पड़ल यही न बचाई पर्था कई खटरा महसूस तो हुई था आग अपन सब डेक बोट डर लगता का सब हो बिशा हुई कल से काटी ट मुझे भी करना डर लगता का डाली त फिर मोटाई कपार कसिन बाटिस फुसी कसिन बाटिस आँखी जीव निक्रैना तरिका हेर्ख सकु चिज हेरही कलसे बल्ल यी सम्प बिखानी हो कैख कहीँ विज्ञ हुँ फे एक ठु सामान्य मन्या हो ख हेर्ना हो कलसे साम डेक डरैना ओहिहेन मार जैना स्वाभाविक हो ऊ मानवीय स्वभाव हो मन या यहीन खा जानख याकल पृथ्वी जोगैनामा भारी महत्व बाटिन यही मारटु अथवा पर्यावरणीय चक्र बिगार्तु कैखनी हो यी आफन भित्र सियाल आफन प्रतिरक्षा करकला हो ओहोर से करा बाट बा लिरौसी फेनी हो भारी करा बाट हो सपा कटिकी कौन कौन मनाइन त यी एलर्जी हुइटन ऊ उहाँ सपा देख्लसी यहाँ एलर्जी हुइटन डाक्टर साहबका यी बात थाहा हुइन धेमिरिक बाट बा ओहोर से हमार कौनो ग्रामीण फेकमा साप मार खैठ अथवा सपा डेप्टिकी मर्थकना नै हो सकु टिमको नेपालीको दिमागमा ऊ हो बा रात ख अन्धारमा न्याङ बेर नम्मा कुछ द्याखल डाबल चुस्स कुछ गाह्रमा गरल कलसी देऊ मही सपा काटल कि कना शङ्का लठा दिमागमा जो हमार ऊ हो बैठल बा एक घरी हेरी डाक्टर उठे पाछ जैबी कह बेर फे उनी मान आजकल एकदम बिसारी खाल मनमा त छोटी कुछ बाट हुइटी कि हार्ट अट्याक हार्ट फेल हुइसक था साप कना छोटी हो तर मनैनकमा एकदम डर पैदा गर्न
6: मनै कुछ बिगार कर लग्ल कैख ऐन त हो नै त उफे खोज खोज के मै कटम कैख ऐन त नि होइन
3: हामीले यो जुन मानव वन्यजन्तु
5: द्वन्द हाम्रो जुन मानव वन्यजन्तु द्वन्दक बाटबाट फेर हाम्रो अक्सर द्वन्दकै कठि तर अक्सर कबु कबु कहाँ उठा कलसी यही न आब हाम्रा सह अस्तित्व वा असमझदारी कना शब्द हान तनि ढ्युर मूलधारमा ल्याउन पर्न आश देख पठा काकर कलसी द्वन्द कलसी त द्वन्दमा रहल दुनु पक्ष हान मै द्वन्दमा बाटो कना ठाँ रहा तर मानव हो वन्यजन्तु केसबाट वन्यजन्तु हुन त यी द्वन्द हो अथवा यी झगडा हो कना बाट होइन त ठानी र टिन ऊ त आफ्नो आधारभूत आवश्यकता पुरा करकला चरकला खान लाग अथवा प्रजनन करकला न होइन हो उसे कुनो फेरि जिनवार मन आक्रमण गर्न कलक आफन प्रतिरक्षाको लागि जो गर्न हो जब होइन खतराको महसुस हुन्छ जस्तो सापनको केसमा हेरि कटरा भए बिस निछोडक सुक्खा कटाएर था सापनका हरेक फेरा बिक्र निछोड रह ऊ स्याकलसम्म आफन प्रतिरक्षा कसिक गर सक्जी था ओसिङको गर्न हो अन्तिम विकल्प कलक त ऊ आफन प्रतिरक्षा करकलाग आफन ठे जौन हतियार बाटिस ऊ प्रयोग गरुवै हो तर औरो जिनवार हो हाम्रामा फरक का कलसे हाम्रो कुनो निर्णय लिनासे पहिला कुनै सोच त सिक्ठी जे हो यीमै करम कना ओ कैरना बीच का जो ग्याप बा उ ग्याप में हमरा नाही असीन हो कई खन डान से सोचली कल से समस्या तक कम कर सक जाए कना आशा लागत महीना वही व्यवहार परिवर्तन का जो बात बा यही ना हमरा एक ठो कमरा का समूह का रूप में नी हेर करना यही ना समूह किटिया करना एक ठो मनिया का करना परिवार का करना समुदाय का करना किन ठो लेवल में हमरा सोच ली हो वह अनुसार का संदेश बने लसे वाकर प्रभावकारिता फिर मजा हुई कना आशा लागत महीना
3: मिसेज पनि बनाए भने सायद त्यसको अलिकति पेनिट्रेसन पनि राम्रो हुन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई।
1: अब हाम्रो सुन्ती बाटी सर्पदंश सम्बन्धी अन्तरक्रियात्मक रेडियो कार्यक्रम जीवन सन्देश। आज हामीसँग बातचितमा बाट श्री शशांक पौडेल, वन मन्त्रालय वन अधिकृत श्री सबनम पाठक तथा रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिडटाउनका पहिला अध्यक्ष एवं संचारविद डाक्टर निर्मल रिजाल।
8: शशांक जी, अब तिनठो लेभल क जोन बाट बटुली जे उहीमा अपना कोनो सन्देश बाट उ तिनियो लेभल हन घर व्यक्ति व समुदाय हन
3: व्यक्तिले चाहिँ के बुझ्न पर्यो भने सबै सर्प
5: व्यक्ति चाहिँ का बुझ परल कलसे सक्कु साँप बिखा हानेर त सक्कु साँप मारे डाँडा पर्न जरुरी निरहट सबसे पहिला उबाट व्यक्ति बुझल कलसे सबसे पहिला काम निमिना हुई घर परिवारक मुनि फे एक औरजन बलगर से फैलाइ परल सक्कु जन इबाट बुझ परल ओ समाज मन एक ठो मेरिक सर्पदंश सम्बन्धी हमार पूर्व तयारी का बाट घर परिवारमा फे पूर्व तयारी का बाट घर परिवारमा फे हेर्न हो कलसे हाम्रो विपदका बाट बटुठी हाम्रो बराबर विपदका बाट बटुठी तर खास गरी हेर्न हो कलसे मानव वन्यजन्तु द्वन्द ओ सर्पदंश फे पोइन्टका हिसाबले हेर्न डिजास्टर हो नि त क्युमुलेटिभ हिसाबमा हेर्न हो कसै त यी त भारी भयो नि त यी विपद चाहिँ हाम्रो कसरी लड्न हो त कना विषयमा सामुदायिक स्तरमा योजना बनाएकै अथवा के हुन साँप डस्टा कसै का गर्न त कसरी तयारी बा कहाँ जैन कसरी गर्न उबेला स्वयंसेवक खुख के जैन उनीहरूलाई एउटा के जैन केही हेर्न सम्पर्क गर्न गाडी कहाँ बा एम्बुलेन्स कहाँ बा कना मिरिक समुदाय लेभलमा कुछ पूर्व तयारी होइन हो कसै जीवन जोगिन प्रयास सहज रूपमा गर्न सक्छ
3: जीवन जोगाउन पनि त्यति हुँदैन
4: त्यसको मतलब
6: ओसिन हो कलेसे रणनीतिक हिसाबले तयार गरिसक्न हो कलेसे याकर सामना सहजै गरिसक जाए कनबाट हन हेरबर मै म्याडम हन पुछे चाहटु अब स्थानीय सरकार हुक्र प्रभावकारी अथवा कही अधिकार के हिसाबले फे उहाँ हुक्र अधिकार दे गैलक अवस्थामा स्थानीय सरकार हुक्रे फे सर्वदंश सम्बन्धी एक ठो मुद्दा उठैन भ्याला हुइलक हो उहाँ हुक्र कर्तीबाट निहुइट अथवा काकर पर्न हो कना आश लागत काकर कलेसे उहाँ जौन रणनीतिक हिसाबले समुदाय स्तरमा संगठित भएका जौन काम कर पर्न बाट बटवैला उ कलक सरकार सहयोग गर्न हो
2: यसमा चाहिँ मेरो धारणा चाहिँ के छ भने जस्तो सरकार
7: म रही म कना काबा कलसे अब तिन तहको सरकारमा नै अब यी सर्पदंश सम्बन्धी काम गर पर्न कलक मुख्य भूमिका चाहिँ स्थानीय सरकारको हो स्थानीय सरकार जो हेर्न कसीको सापनका कटाइमा से बस्न सपवा डस दार कलसी कहाँ जैन टोलमा कहाँ कहाँ ढनाइ उटवाकर टाइम रहट फे ओट्रा समयसम्म वाकर उपचार गर निषेक गेल कलसे त वाकर ज्यान फे जाइस्याकर बिसाह रहल कलसी उ बाट फे बुझाइ परन सबसे पहिला त पालिकामा नगरको वडामा प्रत्येक वडा बजेट वडामा याकर टोली बनाइ पर्न जरुरी बा प्रत्येक वडामा एक ठो टोली बनाख प्राथमिक उपचार कसिक गर्न लघक उपचार केन्द्र कहाँ बा काटदारल कलसे काकरना कैख एक ठो समिति जो बनाइ पर्न जरुरी बा दोस्रो ऊ समिति सरकार से स्थानीय सरकार से यी काम करक लाग हमन वार्षिक रूपमा कतरा पैसा चाहि कैख इस्टिमेट कर परि ऊ इस्टिमेट कैख ऊ पैसा उहाँ धर्न सबसे पहिला त सापन काटे नि दिह परल ऊ फिर मनी हुल दुनु बाट हुई परल सबसे पहिला वाकरलाग हाम्रा घरक आजर पाजर झपा छु नि ढ्याउ हुन् तर सक्कु जहनका घरक अवस्था त बराबर नि रहन ऊ बाट वडाका अध्यक्ष हन नगर प्रमुख हन थाहा रहन ऊ हुइलसे सबसे पहिला त सरसफाइको लागि बजे छुट्याइ परि काकर कलसी उहाँ कुनका सरसफाई गर्न समय फेरि निरटन केक्रो छ सात ठुल लड्का रहन केक्रो डाइकेल केक्रो बाबा केल बाटन ऊ अवस्थामा बिहान चार बजेसे राति एघार बजेसम्म काम गर बेर उहाँकन आफन लड्कन रिझा पकाख खुवाई निसेक्न डाइन फे बाट ऊ मेरिक अवस्था रहन मनी फेरि बाटो हाम्रो लेभल छुट्याइ परल ओसैको घर सरसफाई आफै फेरि गाउँ घरमा काठी से खाना रिझाएको खैना परिवारबाट महाङ्कन काठी कहाँ धर्न ऊ कोनोमा कहाँ साम बैठ ऊ कच्ची घरमा त क्वाठा क्वाठा ब्यारहन निरह घरम परल बिला कसीका टुम्ना हो राखा बिला बनगेल कलसे का करना झोल फाङ्का सुटना हुल झोल लगाखा सुटा बेर फे पक्की घरमा फेर राखा नेगना साँप फेबाट ओसिन ब्याल म कसिन कसिन मेरिक प्राथमिक बाद जान परत कैख सकु बाट उहाँकन जानकारी गराइ परत आफन विशेष कैख उहाँकन छाइ छावन जानकारी दिह परत का कर कलसे डाई बाबन काम कैख डटखर ख आइल रह खा पिख सुट लग्ल कलसे लड्काउ यहाँ कसी
2: स्थानीय सरकारको ध्यान पुगाएको लागि स्थानीय सरकारको वडा अध्यक्ष जी हुकनसी मजासे छलफल गर परल गाउँ घरमा स्थानीय अगुवा हुनु रह उहाँ हुकन फेरि सहभागी गराइ परल उहीमा वडा वडामा यी कार्यक्रम गर परल सुरुमा चाहिँ एकदम करा बा वडा वडामा कार्यक्रम कै खेल जैना जरुरी बा नै त कलसे यी सफल गरेना करा बा काकर कि आज हाम्रो कर्ली दोस्रो जारक महिना आइल कलसी सावनको कटाई कम हुई दोस्रो फेरि गर्मीको महिना आइ फेरि साँप निकलना बेला उहाँ हुकन बिस्ता से कही भोर से हमार करल काम बालुमा पानी दारस ना होए जौन लेभलमा से हाम्रो काम सुरु करल बाटी उही से उपर जैटी रह तर नागिरकना हिसाबले हाम्रो काम गर्न जरुरी बा
6: बजेट नन्न जरुरी बा यही हन औपचारिकता देहक लाग बजेट फे नन्न जरुरी बा
2: बजेट नै छुट्याउनु जरुरी छ किनभने बरु धेरै न होला
7: बजेट चाहिँ छुट्याइ पर्न जरुरी बा बिन ढ्युर नग्नि हुई तर सुरुवात गर्न जरुरी बा जहिले करबेर सचेतनाको कार्यक्रम जटरा घजाई ओट्रह काकर कलसे सापन से बज्ना सहज बा करानी हो हुक्रा खप नहे कटना नि हो नि त जस्तो झपास बा हाम्रो घाँस काट गइल बेला च्याप्प पक्रली कलसे ऊ खटरा महसुस करल नि त ऊ त मही मारकला बाकना हुइल दोस्रो कटना हुइल ऊ त आफ डगर जाइ नि पानी त असिन असिन बाट जस्तो हाम्रो टिना बारी हुइल गोभी बारी महुइल असिन असिन घटना फि देख्ला ओसिन ठाउँमा जाइबेर फेरि तनिक चना खोख जाइ परल कुछु बाँकी कैख सोच विचार गर परल सरसफाइ बिबा हाम्रो निकाल बाटी पानी चल्ल बाटी सकुचि देख पर्था तर फेरि कन बेला मनको दिमाग कहर गिल रठा कहाँ सोच टिरना टिना बारीमा जाइबेर फेरि ध्यान हिम्मत निरहस्याक असिन बाटले फेरि हुइसक था
8: अन्तिममा आफ्नो हुकन कुछ सन्देश देना बाकलाई कहिन
2: मैले चाहिँ अन्तिममा के भने यो कार्यक्रम असाध्यै
7: राम्रो मै अन्तिममा का कहटु कलसे यी कार्यक्रम बर मजा लागल मही हन यी सुरुवात कलक म अपन हुकन ढिहोर झुठाने बाट बा मै एउटा बाट का जोड दिएटु कलसे यी मन्त्रालय अन्तर्गत पर्ल कोर्से मही हन फोन का कराइत कलसे यी वन मन्त्रालयको योजना हो कै खैना हो तर उनी हो यी सकुजानक हो सकु मन्त्रालय हो सकु 3 करोड नेपालीनक सख्या हो कना हिसाबले जैलसे हुई यी मन्त्रालयक ऊ मन्त्रालयक कैख छुट्याइबे त नि कप्ठ्यारो हुइठा यी वन मन्त्रालय केल ठनानी हो खै शिक्षा मन्त्रालय सकु 25 मन्त्रालय सकु मन्त्रालय हुँक्रा आफ्नो कार्यक्रम धर्क ग्रामीण समुदायमा स्थानीय सरकार मार्फत पुग्ले कलसे यी कार्यक्रम सफल हुई ओ हाम्रो सकु जहन फाइदा हुई ओ वातावरण चक्र नि बिग्री वातावरण चक्र मजासी चलिकन महिला गत
8: धन्यवाद शशांक जी
3: अनि यो इम्पोर्टेन्ट इनिसिएटिभ
5: छ यी एकदम महत्त्वपूर्ण पहल हो यही म WWF नेपाल रोटरी से मिलकन नेपाल सरकारको नेतृत्वमा हाम्रो फिल्डमा गतिरहेको कार्यक्रममा कहाँ ठे मिलाखा गतिरहेको भविष्यमा गर्न कार्यक्रममा ढेकन यही न जनसमुदायमा ढिउसे ढिउ सचेतना पुगेपछि मृत्यु दर कम गराइकला हाम्रो सँग मिल्खन काम गर्न कना हाम्रो प्रतिबद्धता पल रहने बा तर मजा काम सुरुवात हुई बा वकरलाक रोटी लगायत सबको सरोकारलाई हुन्कन धन्यवाद
3: शुभकामना छ
8: डाक्टर निर्मल रिजाल सर्पदंश अभियान कलाक रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिडटाउन काकसिन जनचेतनामूलक अभियान काम गर्ने बा बता दिन
9: रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिडटाउनले सन् 2000
6: रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिडटाउन सन् 2019 काठमाडौँमा एक ठो वृहत अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ल रहला सर्पदंश विषयमा जहाँ चाहिँ विभिन्न मुलुकी विज्ञ वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकारी ठोक्रे अस्ट्रेलिया से युके से भारत बांग्लादेश नेपाल सक्कु मुलुक विज्ञ हुक्रे जुटखा एक ठो सम्मेलन गर्ल रही ऊ सम्मेलनका निचोड अन्त्यमा एक ठो निचोड का आइल कलेसे जनचेतनक अभावकै कारणले धिर मनै सर्पदंश जोखिममा पर्थ ऐसिन जनचेतना रहत कलेसे हुक्रे ओसिन सर्पदंशक जोखिम मनसे बचेसेकत सर्पदंश निहुट कलेसे मृत्यु हुन सम्भावना फे कम हुने रह ओसिन मेरिक सन्देश सहित ऊ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन ओराई जयकार आधारमा रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिटाउ काठमाडौँ एक ठो परियोजना निर्माण गरल ऊ परियोजना 4 वर्षे अभियान के रूपमा काम हुइटिबा ऊ मध्ये मिरमिरिक जनहितमा जारी रेडियो सन्देश 11 ठो बा जौन मध्ये 5 ठो रोकथाम हन लक्षित कै घन करागिल बा कलेसे पाँच ठो उपचार हो ऊ मध्ये एक ठो चाहिँ साँप पर्यावरण के अभिन्न अङ्ग हुइटकन सन्देश सहित बा कलेसे ग्यारौँ एक ठो महत्वपूर्ण सन्देश का बा कलेसे साँप काट डरले से का गर्न त खन एकदम महत्वपूर्ण ओहिमा कर पर्न का हो त कै खन ऊ बाट ऊ सन्देश बुझैन कोसिस गर्ल बा ओस्नेहके रेडियो कार्यक्रम बा छोटी सन्देश ओ रेडियो कार्यक्रम मुलुक भरक 41 ठो एफएम रेडियो मासे प्रसारण होइन कर्था उही मस हाम्रो सामाजिक सञ्जाल मासे फे यी सक्कु सामाजिक सन्देश हन सामाजिक सञ्जाल मासे फे जस्ट फेसबुक मासे युट्युब मासे इन्स्टाग्राम मासे फे यी सन्देश पुगाई सेग्भी कलेसे विशेष कैख युवा हुक्रे जे सामाजिक सञ्जाल क प्रयोग कर्था उहाँ हुक्रे जागरूक हुइसकि कन धारणा हो ओसिके पोस्टर बा पोस्टर फे डुनोर प्रिन्ट करागिल बा एक ओर हाम्रो रोकथाम के सन्देश देले बाटी कलेसे एक ओर उपचार के सन्देश देले बाटी इसकको पाँच ठो भाषामा नेपाली मात्र पर्ली बा ऊ बाहेक मैथली भोजपुरी अवधि ओ पश्चिम थारू भाषामा बा अब मै लास्टमा फे एकचो सम्झाइ चाहतुम हाम्रो वेबसाइट www.snakebitenepal.org यी वेबसाइट सर्च गर्बी कलेसे मै आघे कलक सक्कु सामग्री फे भेटाइ सिक्जै ऊ बाहेक सर्पदंश होख उपचार कराइ जैना एन्टी भेनम सेन्टर का फोन नम्बर यी कहाँ हो कौन ठाउँमा बा उहाँको सम्पर्क मनैया के हो यी सक्कु बात यहीमा विस्तृत रूपमा दे गइल बा ऊ वेबसाइटमा आकुर धुर चिज बा अनुसन्धान हुइल न्युज पेपर अथवा पत्र पत्रिका छापा गैलक आर्टिकल हुइल स्वास्थ्य मन्त्रालय हो विश्व स्वास्थ्य संगठनका सर्पदंश सम्बन्धी प्रकाशन इसकको बात उहाँ भेटाइसेक जेट विद्यार्थी अनुसन्धानकर्ता हुनक लागि यी वेबसाइट महत्वपूर्ण रहन करल बा यी परियोजना चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रोटरी इन्टरनेसनलको रोटरी फाउन्डेसन का नबा वाकर एक ठो ग्लोबल ग्रेन्टले सम्भव भइलक हो उहाँ फे हाम्रो ढेर धन्यवाद
8: अब हाम्रो सुनिले सर्पदंश अभियानमा रोटरी कर्लक क्रियाकलापको विस्तृत जानकारी आजकी रेडियो कार्यक्रम जीवन सन्देशमा आफ्नो अमूल्य समय देख यी छलफलमा सहभागी हो देलकमा हाम्रो विज्ञ हुक्रप्रति हार्दिक आभार तथा ढ्यु ढ्यु धन्यवाद आप सुनि यी जानकारी मूलक रेडियो सन्देश
10: यदि क्यु जान अनजानमा चलाइ लगि प्रतिरक्षा करत लाग वा आपन बचाउ करत लाग साम दसना कथा
11: सापन से दूर रही सापन रिस नि लगाए वा नि जिस्कै साप मने देख डरै छ नि तलाख दूर रहन छ साप नि दस्त तर मुक्र खैना खाज बाहिर निस्कल मेरा म खास काटे बिल ख्याल बिल ज्ञान बिल छु बिल छ मने मही मारक बाट कना सबस्क प्रतिरक्षा कर्न क्रम म साप दसना कर्छ मने सापन व्यक्ति कि मारक लाग्र छ ओसिक कर फेर साप दसना कर्छ
12: सर्पदंश सम्बन्धी भर पर्दो हो सही जानकारी प्राप्त कर ओ लङ्घक सर्पदंश उपचार केन्द्र कहाँ बाकै छ पत्ता लगाइक लाग आधिकारिक वेब पेज www.snakebitenepal.org मा हेर सेधिथा
8: आजुक यी रेडियो कार्यक्रममा सापन्से सहअस्तित्वमा रहकलाग व्यक्ति घर परिवार ओ समुदायक भूमिका महत्वपूर्ण हुनाबाट जानकारीसँग नेपाल सरकार वन मन्त्रालय स्थानीय सरकारसे मिल्क साँप संरक्षण गर का कसिम कार्यक्रम सञ्चालन गर सेक्जिठा कना बातचित फे सुन्दी याकरसँग साँप पर्यावरणका अभिन्न अङ्ग हुइट हिक्रथे बाँच पाइ पठा हिकन पर्यावरणमा महत्वपूर्ण भूमिका रहना हुइला कोर्से सापन संरक्षण कर पठाकना जानकारी देती ऐना अठवारक और विषय प्रसंग लेख ऐना बाचा करते आज की प्रस्तुति मसे सहकर्मी संघ रेहकनक संग मई पुष्पा के बिदा हुईटू नमस्ते
6: यी रेडियो प्रस्तुतिमा विद्वान पहुना हुक्रे बटवैलक उहाँक निजी विचार मान्जिने बा ओ नेपाल सर्पदंश रोकथाम परियोजना तर्फसे अभिव्यक्त हुइलक आधिकारिक विचार कैख मान नि हुई
13: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा हो, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र, विश्व स्वास्थ्य संगठन, WWF नेपालका सँग बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेसनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिडटाउनका सँगसँग विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लब हुकन्से जनहितकला प्रस्तुत।
14: यो कृष्ण सार एफएम
15: 94 मेगाहर्ज कृष्ण सार जत्तिकै तेज।
16: आमै नि, सामान खरिद गर्ने यति लामो लिस्ट सर, र हेर्दा नेपालगञ्ज देखि लखनऊसम्म धाउनु पर्ला कि क्या हो?
17: हैन बहिनी, यसमा आत्तिनु पर्ने केही छैन। अब यी सबै ब्रान्डेड कम्पनीको सक्कली र उचित मूल्यको सामान एउटै विशाल बजार मारुति मेगा मार्टमा पाइन्छ। यो रुपैडिया बजारको सब्जी मण्डीको छेउमा रहेको मारुति मेगा मार्ट हो। बहिनी, त्यहाँ शादी विवाहको सबै सामान, सौन्दर्य प्रसाधन, सुटिङ, सर्टिङ, साडी, अन्डर गार्मेन्ट्स, होम एप्लायन्सेस, ड्राई फ्रुट्स, विद्युतीय उपकरणहरू, आर्टिफिसियल ज्वेलरी, किचन तथा टोयलेटहरूको सामान आदि सबै सामग्रीहरू एकै छाना मुनि पाइन्छ।
16: स्थान मारुति मेगा मार्ट सब्जी मण्डी अगाडि गल्लीमा नानपारा रोड रुपैडिहा बजार। मोबाइल नम्बर 98699 64581।
18: अहिया, कान दुखेर हैरान भइरहेछ, के गर्ने, कहाँ जाने होला?
19: बहिनी, किन चिन्ता लिनुहुन्छ? बिर्नोस कान स्वास्थ्य सामुदायिक सेवा हुँदाहुँदै हाम्रा सेवाहरू नाक कान घाँटी रोग विशेषज्ञ तथा कान स्वास्थ्य प्राविधिकद्वारा दैनिक रूपमा कानको परीक्षण जाँच गर्नुका साथै अपरेसन गरिन्छ। कान नसुन्ने बिरामीहरूको लागि कान सुन्ने विभिन्न मेसिनहरू सहुलियत शुल्कमा उपलब्ध गराइन्छ। कानमा पर्न गएका विभिन्न प्रकारका बाहिरी वस्तुहरू, कानको कानेगुजी निकाल्ने, कानेगुजी तथा अन्य कानका फोहोर वस्तुहरूको सरसफाई समेत गरिन्छ। लामो समयसम्म कान पाकिरहेमा वा पिप आइरहेमा कान चिलाउने, कान दुख्ने, कान कराउने, कान डम्प हुने, कानबाट तरल पदार्थ निस्किने, कान कम सुन्ने बिरामीहरूको कान परीक्षण गर्नुका साथै प्राथमिक कान उपचार तथा आवश्यक सल्लाह सुझाव दिइन्छ।
18: साथै प्रयोगशालाको पनि व्यवस्था रहेको छ। अस्पताल शनिबार दिउँसो 1 बजेसम्म खुल्ला रहनेछ।
19: विस्तृत जानकारीको लागि ब्रिनोज कान स्वास्थ्य सामुदायिक सेवा फुलचेक्रा 5 नेपालगंज, सम्पर्क फोन नम्बर 081530244, 98580812244।
20: आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल राख्नु नै साँचो आत्मविश्वास हो। त्यसैले त नेपाल परिवार नियोजन संघ बाँके शाखा विगत लामो समयदेखि यहाँहरूको सेवामा समर्पित छ।
21: हामी कहाँ पूर्ण गोपनीयताका साथ सुरक्षित गर्भपतन, परिवार नियोजनका साधन, पाठेघरको मुख र स्तन क्यान्सरको परीक्षण तथा यौन र प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी परामर्श सेवा उपलब्ध छन्।
20: विशेष सुविधा, अब प्रत्येक आइतबार दिउँसो 3-5 बजेसम्म स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डाक्टर सन्देश आचार्यद्वारा विशेष परामर्श र उपचार पनि पाउनुहुनेछ।
21: ढिला नगर्नुहोस्, आजै स्वास्थ्य सम्बन्धी परामर्श लिनुहोस्। ठेगाना नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 9 रामलीला रोड नापी शाखा अगाडि।
20: फोन नम्बर 081530398।
22: सोचे भन्दा सस्तोमा हाई क्वालिटीका सोफा र फर्निचर चाहियो, आउनुहोस् सोफा हब नेपालगञ्ज।
23: हरेक सामानको खरिदमा 1,000-20,000 छुट, 10-15 वर्षसम्मको वारेन्टी, साथै फ्री डेलिभरीको सुविधा पनि।
22: अहिले थमाथम बिक्री भइरहेको छ। स्थान राजा चोक राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको अगाडि।
23: सम्पर्क 97051148।
22: सोफा हब नेपालगञ्ज,
23: विश्वासमा नम्बर 1,
22: क्वालिटीमा सबैभन्दा बेस्ट।
14: यो कृष्ण सार एफएम
15: 94 मेगाहर्ज कृष्ण सार जत्तिकै तेज।

0: बीर डेंटल
1: नेपालगंज शहर में संचालित अत्याधुनिक सुविधा संपन्न बीर डेंटल में दांत तथा मुख संबंधी संपूर्ण उपचार काठमांडू तथा भेरी अंचल अस्पताल का अनुभवी वरिष्ठ डाक्टर आर के लामी छाने द्वारा उपचार गरिन्छ।
2: डाक्टर लामी छाने द्वारा गरिने विशेष उपचारहरू दाँत सफा गर्ने, दाँत भर्ने, दाँत निकाल्ने, दुखेको दाँतको जराको उपचार, खाली ठाउँमा दुरुस्त प्राकृतिक जस्तै नक्कली दाँत राख्ने, बाङ्गो टिङ्गो तथा नमिलेको दाँत फिक्स अर्थोडन्टिक प्रविधिद्वारा मिलाउने, गिजाको रोग जस्तै गिजा सुन्निने, रगत आउने, पिप बग्ने, मुख गनाउने र दाँत हल्लिने समस्याको उपचार, पहेँलो खैरो दाँत, सानो र ठुलो दाँत, छिद्रा तथा ग्याप भएको दाँतलाई कस्मेटिक उपचार प्रविधिद्वारा राम्रो बनाउने, दाँत मुखको चोटपटक तथा बङ्गारका हड्डी भाँचिएको पनि उपचार हुने।
1: सम्पर्क बीर डेन्टल क्लिनिक भेरी अञ्चल अस्पतालबाट 150 मिटर त्रिभुवन चोक तर्फ।
2: फोन नम्बर 081-532-375।
3: हाय रे दीदिया, हमार टिहुनी बहुत पिरात है, बहुत दवाई कराए डाले, नाय ठीक आते।
4: सुनो बहनी, खुशी के खबर,
5: अब ऑपरेशन के खातिर काठमांडू और लखनऊ दौरे धूपेक न पड़ी। पश्चिम नेपाल में यह एकमात्र आधुनिक अल्ट्रासाउंड के सुविधा है।
4: कृपा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड में यह मूत्र और दिल गुर्दा रोग के सब ऑपरेशन दूरबीन प्रविधि के द्वारा किया जाता है। और हुआ पेट संबंधी सब मेर के दवाई, पित्त थैली के पथरी, अपेंडिस, हार्निया, हाइड्रोसील, बवासीर, फीसर भगंदर जस पुरुष लोगन में यहाँ लिंग, ब्रिये और अंडकोश और मर्दांगनी की कमी हुए समस्या साथ हैं कैंसर संबंधी सब दवाई ऑपरेशन किया जात है। और जानत हो हाथ गोड़ करिहाव, रीढ़, टिहुनी पिराप, झंझनाहट हो, नस पिराप, झमझमाप, हड्डी टूट फूट भवा है तो दवाई और ऑपरेशन के साथ हैं प्लास्टर बांधा जात है। महिला लोगन में यहाँ सफेद पानी बहाव, महीनावारी में यहाँ गड़बड़ी, निसंतानता, गर्भवती लोगन के नियमित चेक जांच, बच्चेदानी और स्त्री रोगन के सब मेर के दवाई के साथ हैं ऑपरेशन किया जात है। 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
6: डॉक्टर प्रवीण कुमार गुप्ता, कंसल्टेंट सर्जन, यूरो सर्जन, जनरल कैंसर, मूत्ररोग तथा मृगौला रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर राहुल मिश्रा, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन, हार्ट जोड़नी तथा नशा रोग विशेषज्ञ।
4: कृपा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, सुर्खेत रोड, आदर्श नगर, नेपालगंज 10, बांके, वन कार्यालय के नेरेन, पेट्रोल पंप के पछुए। संपर्क नंबर 081-531-1000।

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 10 बजेको छ
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी